सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 20, तदनुसार 10 मई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization K.C. Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennathalia and V.D. Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala chief minister and the name will be announced very soon. Defence Research and Development Organisation DRDO has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the Labour Code.

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोताओं भी आप सुन रहे थे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत श्रोताओं आज चर्चा का विषय है फसलों में नमी के लिए सिंचाई की आवश्यकता और इसकी विधियों पर हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र टुडू।

कार्यक्रम खेती की बातें सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं फसलों में नमी के लिए सिंचाई की आवश्यकता एवं विधि। तो आइए जानते हैं, फसलों में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई आवश्यक है ताकि पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों के अवशोषण और उच्च पैदावार सुनिश्चित हो सके। विशेषकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख विधियों में ड्रिप सिंचाई, जड़ों तक बूंद बूंद पानी और फव्वारा सिंचाई वर्षा की तरह छिड़काव शामिल है, जो पानी की बचत और समान वितरण में सहायक है। पारंपरिक विधियों में क्यारियां बनाकर या बाड़ द्वारा सिंचाई शामिल है। फसलों में सिंचाई की आवश्यकता के बारे में बात करें तो सिंचाई फसलों के विकास और मिट्टी की उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें नमी की संतुलन या मिट्टी को आवश्यक नमी बनाए रखती है, जिससे पौधे को पोषक तत्व आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद आसमान वर्षा या सूखे की स्थिति में सिंचाई फसलों को सूखने से भी बचाती है। इसके साथ ही सही समय पर सिंचाई के फसल की गुणवत्ता और पैदावार में वृद्धि होती है। ये फसल को पाले से बचाने और खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी प्रदान भी ये करती है। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि सिंचाई की प्रमुख विधियां क्या क्या है। सबसे पहले तो मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता और फसल के अनुसार सिंचाई की विभिन्न विधियाएं अपनाई जाती है। इसमें प्रमुख है आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई विधियां। इससे पानी की बचत हेतु ड्रिप सिंचाई ये सबसे कुशल विधि है। इसमें पानी सीधे पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे 50% तक पानी की बचत होती है और उर्वरक भी सीधे जड़ों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है फव्वारा सिंचाई। इसमें नोजल द्वारा फसल की तरफ फसलों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, या आसमान और रेतीले भूमि के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके बाद आता है सतही सिंचाई विधियां। इसके तहत क्यारियां विधि, इसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर पानी दिया जाता है। अगला है बाड़ या प्रवाह सिंचाई। इसमें पूरे खेत में पानी छोड़ दिया जाता है, जो सीधे खेत में जाता है। सिंचाई के समय का निर्धारण की बात करें तो सिंचाई का सही समय, श्रोताओं आइए इसके कुछ प्रमुख बातें आपको बताते हैं। इसमें फसलों की जल आवश्यकता के अनुसार पानी दे, जिसमें जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर आधार हो। इसके साथ ही जल कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई यानी कि ड्रिप स्प्रिंकलर को प्राथमिकता दें। अगला है पौधे की जड़ों में पानी की आवश्यकता होती है, ना कि पत्तियों को ड्रिप सिंचाई में। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने बातें की फसलों में नमी के लिए सिंचाई की आवश्यकता और इसकी अलग अलग विधियों पर जानकारी दे रहे थे सुरेंद्र टुडू। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला मंत्र भी है। हम सभी के भीतर एक अपार शक्ति है, एक अनदेखी ऊर्जा जो अक्सर परिस्थितियों और आत्मसंदेह की धूल में छिप जाती है। विवेकानंद जी का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि जब तक हम स्वयं अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते तब तक कोई भी मंजिल पास नहीं आएगी। आज के युवाओं के लिए ये विचार बहुत जरूरी है। जब हर दिशा में प्रतिस्पर्धा है, विकल्प है, भ्रम है, तो ऐसे समय में निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और अडिग लक्ष्य भावना ही सफलता की कुंजी बनती है। ठोकरें मिलेंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन एक साधक की तरह जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक आप हारेंगे नहीं। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और श्रोताओं आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:16 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं कार्यक्रम वंदना की शुरुआत करते हैं इस मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

संवेद स्वरों में भी आपने सुनाई देशगान। एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम वंदना में आगे सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में भजन।

कार्यक्रम वंदना श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में भजन।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है रामचरितमानस।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 7:10 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। 7:20 पर हम लेकर हाजिर होंगे अंगिका लोकगीत कार्यक्रम, लोकगीत के अंतर्गत, और कलाकार होंगी नेहा सिंह। 7:35 पर सुनिएगा बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि, और 7:50 पर होगा स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय होगा डिमेंशिया, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, और इनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी राजेश कुमार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 7 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: और श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। आइए आपको बता दें आज यानी 10 मई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। श्रोताओं आज का ये दिन हमारे भारतीय इतिहास के लिए बेहद जरूरी है। आज ही के दिन 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था। आज ही के दिन सन 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान की सहमति हुई थी। श्रोताओं आज के दिन ही भारतीय शतरंज खिलाड़ी पिंटाला हरिकृष्णा का जन्म हुआ था सन 1986 में। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक संगीतकार और अभिनेता पंकज मल्लिक का जन्म आज ही के दिन सन 1905 में हुआ था। भारतीय थल सेना के 26वें थल सेना अध्यक्ष रहे वीके सिंह का जन्म भी आज ही के दिन सन 1951 में हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म भी आज के दिन ही सन 1980 में हुआ था। और श्रोताओं आज के दिन ही प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक रहे पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन सन 2022 में आज के दिन ही हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे मैकमोहन आज के दिन ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था सन 2010 में। और आज ही के दिन फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का भी देहांत हुआ था सन 2002 में। और श्रोताओं आज का ये दिन हर साल मई महीने का ये दूसरा रविवार हम मनाते हैं मातृत्व दिवस के रूप में यानी मदर्स डे के रूप में। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं एक माँ होना हर एक महिला के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। ये दिन सिर्फ एक कैलेंडर का तारीख नहीं है बल्कि ये उस निस्वार्थ प्रेम बलिदान और अटूट शक्ति को समर्पित एक वैश्विक उत्सव है जिसे हम माँ कहते हैं। श्रोताओं ये शब्द अपने आप में ही एक पूरी सृष्टि है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी पहली गुरु पहली मित्र पहली रक्षक उसकी माँ ही तो होती है। दुनिया के हर कोने में चाहे संस्कृति अलग हो भाषा अलग हो रहन सहन अलग हो वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन माँ का स्थान तो सर्वोपरि रहता है। मातृ दिवस मनाने की परंपरा आधुनिक समय में भले ही व्यवसायिक रूप ले चुकी हो लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी और भावनात्मक हैं। प्राचीन यूनानियों और रोमनों के समय में भी मातृ दिवस के सम्मान में त्यौहार मनाए जाते थे। आधुनिक मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में अन्ना जार्विस द्वारा की गई थी। वे अपनी माँ से बहुत प्रेरित थीं जिन्होंने गृह युद्ध के दौरान शांति और स्वास्थ्य के लिए काम किया था। अन्ना चाहती थी कि साल का एक दिन ऐसा हो जब हर

अपनी खुशियों को, अपनी नींद को और कभी कभी तो अपने सपनों का भी त्याग केवल इसलिए कर देती हैं ताकि उनकी संतान का भविष्य उज्जवल हो सके। बच्चे का बोलना, पहला कदम रखना, डगमगाना, चलना और व्यवहार करना, ये सब कुछ माँ से ही तो सीखता है। माँ के संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र की नींव रखते हैं। आज के आधुनिक युग में माँ की भूमिका में थोड़ा बदलाव आया है। अब माँ घर के चार दीवारी तक सीमित नहीं है। आज की माताएं वर्किंग मॉम्स कहला रही हैं। दरअसल ये शब्द भी आज के ही आधुनिक जमाने में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले माएं वर्किंग नहीं थी। माँ एक ऐसी ड्यूटी है श्रोताओं, जो 24 घंटे विदाउट पे काम करती हैं। तो आप सभी को आज की मातृत्व दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आज का ये पूरा दिन हम सभी की माओं को समर्पित है, और कितनी भी बातें अगर माँ पे कर ली जाएं तो कम ही है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

क्या खूब कहा है सुदर्शन फकीर ने, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, न दोस्ती के लिए न मोहब्बत के लिए। श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म फिर आई बरसात से, आवाज जगत जगजीत सिंह की, बोल लिखे हैं सुदर्शन फकीर ने और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

घर से निकले थे हौसला करके। आवाज़ जगजीत सिंह की, संगीत बज गया है जगजीत सिंह ने और बोल लिखे हैं राजेश रेड्डी और जगजीत सिंह ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये सुगम संगीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हमने शामिल किए हैं अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं नेहा सिंह।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आज हमने शामिल किए हैं रविंद्र संगीत। कलाकार हैं स्वप्न बसु।

0: बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे रविंद्र संगीत, कलाकार थे स्वप्न बसु। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय है डिमेंशिया। इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी और इनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे डिमेंशिया के बारे में। आजकल के दिनों में डिमेंशिया एक समस्या बनती जा रही है। आखिर में डिमेंशिया है क्या, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, डिमेंशिया हम कहते किसे हैं, ये क्या है?
2: डिमेंशिया या हिंदी में इसे कहें मनोभ्रंश।
1: जी,
2: बड़ी उम्र में होने वाली एक समस्या है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिमाग या जो मस्तिष्क है उसमें नुकसान पहुंचने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव पैदा होता है, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया का मरीज शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि वो मानसिक रूप से कमजोर होता है और वो अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है, यह एक समस्या है। हो सकता है किसी सदमे के कारण उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा हो। डिमेंशिया में सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें समाज में जागरूकता नहीं है, जिसके कारण कि डिमेंशिया वाले पेशेंट की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है। इसलिए डिमेंशिया जो है उसमें समाज का, उनके परिवार के लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है, ताकि वो इस स्थिति से उभर सके। डिमेंशिया का मर्थ होता है डी का मतलब होता है विदाउट, मेंशिया का मतलब होता है माइंड, तो विदाउट माइंड। इस स्थिति में मरीज जो है वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, उनका याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाता है। डिमेंशिया की समस्या गंभीर है, इसमें बहुत सारी चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। खासकर इसमें मरीज के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत असर पड़ता है और ये समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा बढ़ती जाती है। बहुत से लोग डिमेंशिया को क्या करते, सठियाना या फिर पागलपन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
1: आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा
2: नहीं, लोगों द्वारा ये वर्ड बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। डिमेंशिया का मतलब ये नहीं है कि वो मरीज मंदबुद्धि है या फिर वो पागल है। डिमेंशिया जो है वो असल में क्या है, याददाश्त का खो जाना है। तो लोग इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल ना करें, ताकि वो जो स्थिति से गुजर रहे वो उनके लिए और दुखदायी हो जाता है। डिमेंशिया की समस्या 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में देखा गया है। डिमेंशिया के प्रमुख लक्षण है कि वो किसी भी बात को बार बार दोहराते हैं, बात को समझने में उनको कठिनाइयां होती है, सामाजिक तौर तरीके भूल जाते हैं, अजीब से व्यवहार करने लगते हैं, कभी कभी वो लोग असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी करने लगते हैं, गाली देना या अश्लील हरकत करना, इस तरह की भी देखा गया है कि ऐसे हरकत वो करते हैं। किसी काम को बहुत कोशिश के बाद उनको किसी चीज की याद आती है, सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है और उनके द्वारा निर्णय लेना भी कठिनाई हो जाता है उनको। वो अधिकतर अपने में खोए रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बिना बात का ही वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, बात बात में चिड़चिड़ाने लगते हैं। सुबह अगर उन्होंने नाश्ता किया है तो वो भी भूल जाते हैं। अच्छा। लोगों के नाम याद करने में उनको समस्या होती है, छोटी छोटी बातों को वो भूल जाते हैं और उनके लिए काफी मुश्किल पैदा हो जाती है। और ये सिर्फ परिवार के लिए भी दुखदायी होता है, कष्टदायी होता है और समाज के लिए भी।
1: आपका कहने का मतलब अगर डिमेंशिया से कोई ग्रसित है तो उसे पारिवारिक सहयोग मिलना
2: बहुत जरूरी है। ऐसी डिमेंशिया में देखा गया है कि लोग या तो उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, साफ सुथरा रहने में उनको समस्या होता है, दिन तारीख महीना भूल जाते हैं, अपने देश को, अपने शहर को, अपना घर, अपना नाम भी भूल जाते हैं, किसी का तस्वीर को समझ पहचान नहीं पाते हैं।
1: ऐसे में ये भी खतरा बना रहता है कि अगर घर से बाहर निकल जाए तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं पता चलता।
2: उनको अपने घर का पता नहीं पता याद रहता है, तो वो कहीं भी भटक सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज और परिवार दोनों को इनका पूरा सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि ये पागलपन है या सखिया गए हैं, इस तरह वो ना समझे। और किसी भी इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें किसी मनोचिकित्सक को उनको दिखाए।
1: इसका उपचार किस तरह से संभव है?
2: देखिए, अभी तक डिमेंशिया का कोई भी कारगर इलाज नहीं है। वैज्ञानिक अभी इस बीमारी के बारे में एक राय नहीं बना पाए हैं। दिमाग में कोशिकाएं जो है वो काम करना बंद कर देती है और उसे दोबारा स्टार्ट करने का कोई भी फॉर्मूला

0: अभी तक मेडिकल साइंस के पास नहीं है, लेकिन डिमेंशिया होने के होने वाली जो कुछ समस्याएं हैं उसमें कुछ मेडिसिन देकर राहत दी जा सकती है, लेकिन उसे अभी पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।
1: आपका कहने का मतलब कि डिमेंशिया को पूरी तरह से ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ दवाएं देकर उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं,
0: जी
1: ताकि जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित है वो अपना जो जीवन है उसको अच्छी तरह से गुजार सके। डॉक्टर साहब, आपने डिमेंशिया के बारे में अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस बारे में अभी विस्तृत रूप से जानकारी दे रही थी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

0: आपके साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद आदि ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक

0: का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक, बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the art of living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of

नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के

0: प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित। स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान। प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल से पीएलएफआई के दो उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए चार अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स तथा संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आंशिक बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर राज्य की मूलभूत व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों की स्थिति खराब है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
1: अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर है और बहुत ही कुव्यवस्था है। निर्बाध रूप से बिजली देने की बात झारखंड सरकार की थी, लेकिन आज की स्थिति है 6 घंटा 8 घंटा लोगों को बहुत ही मुश्किल से ये बिजली भी मिल पा रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सरकार का जाना तय है।
0: जनगणना 2027 के तहत रांची जिले में आज विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक डिजिटल माध्यम से स्वगणना में भाग लेने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। जनगणना से जुड़ी सभी सूचनाएं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। साहिबगंज जिले में समाहरणालय परिसर में सेंसस 2027 अंतर्गत आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा नागरिकों को स्वगणना के प्रति प्रेरित करेगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर बैठक की। इसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
2: पिछली बैठक में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे उसके नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग थी और 149 CBSE ICSE स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और PTA भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है। जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।
0: रांची व्यवहार न्यायालय परिसर में पलाश आजीविका कैफे का उद्घाटन झारखंड

0: हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। नगड़ी प्रखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कैफे का संचालन करेंगी, जहां पारंपरिक व्यंजनों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिलिंगा जंगल में छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके पास से 2 देशी कट्टा और गोलियां बरामद की गई हैं तथा वे संगठन के लिए लेवी वसूली में सहयोग करते थे।
1: 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी लोग भी इसमें संलिप्त थे उनको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। और इन लोगों में से जो एक व्यक्ति है पुलन पोंगाड़ी और एक व्यक्ति का नाम है इसमें राजू स्वान, जो पुलन पोंगाड़ी है इसके ऊपर पास्ट में भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।
0: धनपाद के झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी जारी है।
2: बरवड्डा के एक व्यापारी को डरा धमका के इनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। जब इसके तह तक पहुंचा गया तब पाया गया कि 4 अभियुक्त हैं, जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। इसमें से एक जयकांत शिक्रे केंद्रवा का रहने वाला है और नामी गिरावे डकैत था पहले और अभी भी इस टाइप चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है।
0: देवघर जिले में पुलिस ने सारठ और खागा थाना क्षेत्र के गांवों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि संरक्षण देने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टोल फ्री नंबर 1930 के प्रचार पर जोर दिया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल और तैयारी शिविर का आयोजन KIIT भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 22 मई से काठमांडू नेपाल में आयोजित होने वाली कावा महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन परीक्षण कैंपस भुवनेश्वर में 13 और 14 मई को आयोजित होगा। जमशेदपुर FC को GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु FC के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के लिए मैच का एकमात्र गोल रयान विलियम्स ने 38वें मिनट में किया। मौसम विभाग ने रांची खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गरज वर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 16 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने बंगाल में नई सरकार के गठन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, तमिलनाडु में विजय पथ, नतीजे के 5 दिन बाद बहुमत, शपथ ग्रहण आज। प्रभात खबर के शब्द हैं, विश्वविद्यालयों के वित्त विभाग में 3 साल से कार्यरत कर्मियों को बदलने का आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान, प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल में पीएलएफआई के दो उग्रवादी गिरफ्तार, धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए चार अपराधी, और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने मां बनाई। ये पंक्ति केवल एक कथन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच है। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में पूरी कायनात है। वो एहसास है जो हमारे जन्म से पहले ही हमें अपनी ममता की छांव में ढक लेती है। दुनिया में यदि कोई रिश्ता सबसे निस्वार्थ, सबसे पवित्र और सबसे मजबूत है तो वो माँ का रिश्ता है। नमस्कार श्रोताओं, फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। और आज पूरा विश्व मना रहा है मदर्स डे। जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तब सबसे पहले जिस चेहरे को देखते हैं वो होता है माँ का चेहरा। और शायद इसी कारण पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन माँ की आंखों में अपने बच्चे के लिए प्यार कभी नहीं बदलता। हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को पूरी दुनिया मदर्स डे मनाती है, लेकिन सच तो ये है श्रोताओं कि माँ के लिए एक दिन क्या पूरी जिंदगी भी काफ़ी नहीं होती। माँ वो किताब है जिसे हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। वो मंदिर है जहाँ बिना मांगे कुछ भी मिल तो जाता है और ना मांगो तो भी मिल जाता है।

फिल्म छोटा भाई का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ भी। और श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत तो माँ के ही साए में होती है। बच्चा बोलना सीखने से पहले माँ की भावनाएं समझना सीख जाता है। माँ ही हमारी पहली टीचर होती है, जो बिना किताबों के भी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देती है, हमें चलना सिखाती है, हम जब भी गिरते हैं हमें संभलना भी सिखाती है, दूसरों का सम्मान करना सिखाती है और सबसे ज़रूरी इंसान बनना सिखाती है। माँ के कदमों में वो जन्नत है जहाँ हर दर्द को सुकून मिलता है। जब बच्चा छोटा होता है माँ रात रात भर जाग कर उसका देखभाल करती है, खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। उसकी थकान बच्चे के मुस्कान देखकर ही गायब हो जाती है। आज के इस आधुनिक युग में श्रोताओं, जैसे हम डिजिटलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन के आगे बढ़ रहे हैं, जहां लोग रिश्तों को समय नहीं दे पा रहे हैं, वहां माँ अब भी अपने बच्चों के लिए पूरे दिल से जीती हैं। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन माँ का रिश्ता सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं। यदि बच्चा सफल हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुश भी माँ होती है, और यदि बच्चा असफल हो जाए तो वही माँ सबसे पहले कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, ये तो वो दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती। माँ हमारे जीवन की वो ताकत है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। उसकी एक मुस्कान हमारे सारे दुख दूर कर देती है।

श्रोताओं, समय बदल गया है और शायद आगे समय बदलेगा भी। दुनिया भी बदल गई है और आगे भी दुनिया बदलेगी, लेकिन माँ की दुआ आज भी वही है जो सालों सालों पहले थी और आगे भी वही रहेगी। बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिल्म संगीत से हमें दीजिए अनुमति। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार और फिर 9:05 पर हम आपसे मिलेंगे कार्यक्रम सुरंजना के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में स्वर्ण युग में है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं सुरंजना।

जब भी उर्दू शायरी और भारतीय सिनेमा के उन गीतों की बात होगी जो रूह को छू लेते हैं, तो कैफी आजमी का नाम सबसे ऊपर की कतार में नजर आएगा। कैफी साहब केवल एक गीतकार या शायर नहीं थे, ये एक पूरी विचारधारा थे, एक आंदोलन और एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी कलम को मजलूमों की आवाज बनाया।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरंचना में। और आज कार्यक्रम के इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, आज कार्यक्रम सुरंचना हम समर्पित करेंगे मशहूर शायर और भारतीय सिनेमा के मशहूर गीतकार कैफी आजमी साहब को। श्रोताओं, कैफी आजमी साहब का जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनके पिता जमींदार थे और चाहते थे कि इनका बेटा आगे पढ़े और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे, और इसलिए उन्हें धार्मिक शिक्षा के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध सुल्तानुल मदरसा में भेजा गया। हालांकि नियति को कुछ और मंजूर थी। कैफी साहब का मन मदरसे की बंदिशों में नहीं लगा। वहां उन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर बात की और जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया, और उसके बाद कैफी आजमी साहब ने रुख की शायरी की तरफ, अपनी बातों को लिखने की तरफ, और एक सच्चा देश

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफ़े आज़मी के बोल और मदन मोहन का संगीत बद किया हुआ ये गाना फिल्म हकीकत से, चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए ये गाना जब कैफ़े आज़मी ने लिखा तो वो गाना आज भी भारत के अघोषित राष्ट्रगान जैसा सम्मान रखता है, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। श्रोताओं, कैफ़ी आज़मी साहब का फिल्म जगत में आना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उर्दू साहित्य का सिनेमा से एक खूबसूरत मिलन था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1952 में फिल्म बुज़दिल से की। निर्देशक गुरुदत्त के साथ कैफ़ी साहब ने अमर काम किया। फिल्म कागज़ के फूल का ये गाना जो अभी हम आपको सुनवा रहे हैं, आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे उदास और गहरे गीतों में गिना जाता है, लेकिन ये गीत अमर हो गए हैं।

कैफी आजमी साहब ने अपनी पहली गजल मात्र 11 वर्ष की उम्र में लिखी थी। वे लिखते हैं, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्मश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। श्रोताओं, 1970 में आई थी फिल्म ही राजा। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसका पूरा संवाद, इसका पूरा डायलॉग कैफी साहब ने पद्य में लिखा है, यानी वर्स में। ये एक असाधारण उपलब्धि थी जो आज तक कोई दोहरा नहीं पाया। आइए इस फिल्म का ये गाना हम आपको सुनाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक बार फिर से। फिल्म ही रांझा का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। और श्रोताओं, कैफी साहब का प्रेम जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं था। हैदराबाद के एक मुशायरे में उनकी मुलाकात शौकत आज़मी से हुई और तमाम सामाजिक बाधाओं के बावजूद इन दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। शौकत जी खुद एक बेहतरीन अभिनेत्री बनी। इनकी बेटी शबाना आज़मी आज भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक हैं और बेटे बाबा आज़मी एक प्रख्यात सिनेमेटोग्राफर हैं। अपनी सफलता के शिखर पर होने के बावजूद कैफी साहब ने अपनी जड़ों को नहीं भूले। उन्होंने अपने आखिरी वर्षों में अपने गांव मिजवा को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वहाँ स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई और महिलाओं के लिए रोजगार के केंद्र खोले। आज शबाना आज़मी मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उनके सपने को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी काव्य कृति आवारा सचते के लिए कैफी साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी सम्मानित की गई है। इसके साथ साथ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी कैफी साहब को दिया गया है। 10 मई 2002 को ये महान शायर इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन इनकी पंक्तियां हमेशा जीवित रहेंगी। मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया

चश्मा नहीं मिलता। श्रोताओं, कैफी साहब एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने दिखाया कि कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज की चेतना को जगाने के लिए भी होनी चाहिए। उनके शब्दों में जो सादगी और गहराई थी वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक पाठशाला की तरह है।

फिल्म अर्थ का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में, बोल कैफी आजमी के थे और धुन बनाई है जगजीत सिंह ने। और श्रोता इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत और पल्लव के आज के इस अंक के साथ हमेशा की तरह मैं आपकी सीमा दीदी। बच्चों इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर हर रविवार आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पल्लव। आइए आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। आज मई महीने का दूसरा रविवार है और आज है मदर्स डे। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, इस विषय पर आज हम बातें करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि बच्चों आगामी 12 मई को नर्स दिवस है, त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति होती है नर्स, इस बारे में भी आज के कार्यक्रम में बातें करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें।

जो मदर्स डे एक ऐसा दिन है जब हम अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता और स्नेह व्यक्त करते हैं। ये दिन उनके अथाह प्यार, देखभाल और बलिदान के लिए धन्यवाद कहने का अवसर है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसे मनाने की परंपरा और कारण अलग अलग है। इसकी शुरुआत अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन शहर में एना जार्विस ने की थी। उन्होंने इस दिन को माताओं और उनके मातृत्व का सम्मान करने के लिए शुरू किया। समय के साथ ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। माँ हमेशा बच्चे के लिए खास होती है। ये वो खास अवसर है जब हम अपनी माँ को उनके प्यार, देखभाल और त्याग के लिए धन्यवाद कहते हैं। माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ की गोद तो बच्चे की पहली पाठशाला होती है। वो 9 माह अपने गर्भ में बच्चे को रखकर हर दर्द सहती है और जीवन भर उसके लिए समर्पित रहती है। बच्चों के लिए उनकी माँ की देखभाल और स्नेह सबसे अधिक मूल्यवान होता है। जब बच्चे बीमार होते हैं, माँ की देखभाल उन्हें सुरक्षित और सुकून देती है। माँ का स्नेह उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ये देखभाल और स्नेह उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब वे गलतियां करते हैं या कुछ नया सीख रहे होते हैं तो माँ का धैर्य उन्हें हिम्मत और आत्मविश्वास देता है, अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। बच्चों, माँ का मार्गदर्शन और शिक्षा उन्हें जीवन के हर कदम पर सही दिशा दिखाती है। चाहे वो स्कूल के काम में मदद हो या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना, बच्चे हमेशा अपनी माँ की राय को प्राथमिकता देते हैं। जीवन के हर उस उलझन और चुनौतियों के साथ माँ उनके साथ खड़ी रहती है। उनका आत्मविश्वास उन्हें प्रेरित करता है कि वे भी खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। चाहे जीवन में कैसी भी समस्या हो, बच्चे सबसे पहले माँ की ओर ही देखते हैं। माँ का समर्थन उन्हें ताकत और साहस देता है कि वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चों, माँ का प्यार एक अद्वितीय शक्ति है जो बच्चे के जीवन को शुरुआत से ही आकार देती है। माँ का प्यार एक अनोखा और अटूट बंधन है जो माँ और उसके बच्चे के बीच बनता है। ये प्यार दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और गहरा रिश्ता है। अपने बच्चे की परवरिश और खुशी के लिए माँ अपना जीवन समर्पित कर देती है। सच, माँ का प्यार सबसे अनमोल है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आइए बच्चों, आज हम हर माँ को सम्मान और प्यार दें, उनकी मेहनत की सराहना करें और अपने जीवन में उनकी अहमियत को महसूस करें।

बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिन इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में विज्ञान और तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और इस दिन की स्थापना पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण की याद में की गई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मनाया गया था। 11 मई 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण परमाणु टेस्ट किया था। ये परीक्षण भारत की तकनीकी उन्नति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसने देश के लिए परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह भारत सरकार, नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन काउंसिल, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र और विज्ञान केंद्रों सहित कई संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिवस का इतिहास 1998 से शुरू होता है, जब भारतीय सेना ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निगरानी में राजस्थान में 5 परमाणु बम परीक्षण पोखरण 2 किए थे। पोखरण 2 का नेतृत्व भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। पोखरण परीक्षण की बड़ी सफलता के बाद भारत छठे परमाणु देश का हकदार बन गया। ये दिन देश की तकनीकी उपलब्धियों को पहचानने और क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के योगदान को सम्मान करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। हर साल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड NTD को साइंस और टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। इसके अलावा भारत भर में NTD कई अवसरों पर वैज्ञानिक प्रयासों का समर्थन करने और छात्रों के बीच रुचि को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों, आज सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में किया जा रहा है। हम लोगों से बातचीत करने के लिए कई तरह के साधनों का उपयोग करते हैं। चलिए आज उन सभी साधनों पर एक नजर डालते हैं जिसका हम प्रयोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करते हैं। जैसे टेलीफोन हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। व्यवसायी अपने कर्मचारियों और

संरक्षकों के साथ संवाद करने के लिए ईमेल पर भरोसा करते हैं। टेक्स्ट संक्षिप्त संदेश हो या लंबी बातचीत, टेक्स्ट संदेश हमें आसानी से कनेक्टेड रखते हैं, चाहे टाइप किया गया हो या पुराने जमाने की तकनीक जैसे कलम और कागज से लिखा गया हो, पत्र अभी भी एक संदेश पहुंचाता है। सोशल मीडिया कई अलग अलग एप्लीकेशन बनाने, शेयर करने और कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय है। वेबसाइट, ये तकनीक विभिन्न प्रकार के संदेश उत्पन्न करती है, ये विचारों, समाचारों और व्यवसाय का माध्यम है। आज विज्ञान का स्वरूप काफी विकसित हो चुका है, पूरी दुनिया में तेजी से वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं। इन आधुनिक वैज्ञानिक खोजों की दौड़ में भारत के जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजम, हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिकों का वनस्पति, भौतिकी, गणित, रसायन, यांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। खगोल विज्ञान में प्राचीन अध्ययनों के आधार पर ही भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों में लगे हैं। आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अपने बलबूते पर उपग्रह बनाकर और अपने ही शक्तिशाली रॉकेटों से उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करने में समर्थ है। भारत आज अपने दम पर मिसाइल रक्षा तंत्र विकसित करने में सफल हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना हमें बाकी है। भारत को विश्व शक्ति बनने के लिए दूसरों से श्रेष्ठ हथियार प्रौद्योगिकी विकसित करनी पड़ेगी। अग्नि 5 और रीसेट 1 की कामयाबी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 80% से अधिक स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया गया है। इस कामयाबी में स्वदेशी तकनीक के साथ साथ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम की भी पुष्टि होती है। अगर सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ हम लगातार अपनी प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद अपने नीति नियंता बन जाएंगे और दूसरे देशों पर किसी तकनीक, हथियार और उपकरण के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि कैसी रही है, और अब कुछ जरूरी बातें। बच्चों, कई बार आपने अस्पतालों या क्लिनिक में डॉक्टर के साथ नर्सों को तन्मयता से कार्य करते देखा होगा। अक्सर मरीजों के लिए केवल इलाज ही नहीं, बल्कि नाजुक क्षणों में उनकी देखभाल करने वाली नर्सों की दयालुता, उनकी मीठी बातें और उनकी उपस्थिति स्थायी छाप छोड़ती है। बीमारी या दर्द के दौरान जब वे सहारा देते हुए भरोसा दिलाती हैं कि सब ठीक होगा, आप अच्छे हो जाएंगे, तो मरीज को स्वस्थ होने की राह में कोमल प्रोत्साहन जरूर मिलता है। चाहे सर्जरी से उबर रहा कोई बुजुर्ग हो या गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती अपने बच्चे की देखभाल कर रहा कोई अभिभावक, एक दयालु नर्स की मधुर मुस्कान और उसकी उपस्थिति मन को शांति और आशा प्रदान करती है। बच्चों, आपने देखा होगा, नर्स मरीज का सबसे पहले स्वागत करती है, इलाज के दौरान उनकी सही तरीके से देखभाल करती है, दवा देना, टेम्परेचर लेना, विभिन्न उपकरणों को लगाना, ये सारे कार्य समय से करती है और इलाज के बाद स्वस्थ होने पर आखिर में उन्हें अलविदा कहती है। उनका काम सिर्फ दवाइयां देना या मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करना ही नहीं होता, बल्कि वे उपचार प्रक्रिया के हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मरीजों की 24 घंटे निगरानी, जीवन रक्षक उपकरणों का उचित प्रबंधन और आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया भी नर्स ही देती है। बच्चों, सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स के साथ पूरी तरह डटी रहती है ये नर्स। प्रसव के दौरान माताओं को सहायता प्रदान करती हैं, साथ ही नवजात शिशु की देखभाल में भी वे माताओं को मार्गदर्शन देती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और जांच सेवाएं भी प्रदान करती हैं। कहना ना होगा कि नर्स स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की रीढ़ है, जो जीवन बचाने, रोगियों के उपचार में सुधार लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बच्चों, आधुनिक नर्सिंग की अग्रदूत फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान नर्सों ने घायल सैनिकों की देखभाल की और स्वच्छता की स्थिति में व्यापक सुधार किया, जिससे आज की पेशेवर नर्सिंग की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 का विषय है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। इस वर्ष का थीम ये दर्शाता है कि नर्सों को उन्नत प्रशिक्षण, उपयुक्त उपकरण, नेतृत्व के अवसर
और नैदानिक

निर्णय लेने में अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त हो। जब नर्सें सशक्त होती हैं, तो वे आपात स्थितियों या इमरजेंसी की समय बेहतर ढंग से सामना करके रोगी सुरक्षा में सुधार कर और समय पर प्रभावी देखभाल करने के लिए अधिक सक्षम होती हैं। बच्चों, स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की भूमिका केवल उपचार करना ही नहीं बल्कि रोगियों के सबसे नाजुक क्षणों में उनकी बात सुनना, उनका समर्थन करना और उनके साथ खड़े रहना भी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मरीजों के प्रति हम उनकी लगन, निस्वार्थ सेवा, करुणा, कौशल और अथक समर्पण को सलाम करते हैं।

समूह स्वरों में बच्चों अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में हमने मदर्स डे पर बातें की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर हमने आपको बताया, एक नर्स त्याग और सेवा की मिसाल होती है इस बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता एस्थर चंपी और इसके साथ ही बच्चों आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 10 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से। 10:10 का वक्त होगा विश्व दर्पण समाचार का और 10:20 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन में 11:05 पर सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर और 12:05 पर होगा कार्यक्रम भाव गीत। 12:30 पर मैंने अपना कार्यक्रम सुनेंगी अंगना। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए

0: ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा। उन्होंने ट्रिनिडाड टोबैगो के पेनाल में एक स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि एक केंद्र देश और व्यापक कैरिकॉम क्षेत्र के लिए उपहार है। उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर में दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और भारत तथा ट्रिनिडाड टोबैगो के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के साथ मतभेद सामने आने के बाद भी यूरोप नाटो गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करना चाहता है। स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिटसन के साथ श्री मर्ट्स ने भविष्य में इस गठबंधन को सक्रिय रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने गठबंधन के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत किया है। श्री मर्ट्स ने कहा कि यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद अब भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही रणनीतिक उद्देश्य है, ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम न हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के यूरोपीय सदस्यों के बीच तनाव ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। होर्मुज, जलडमरू, मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद यह बयान आया है। 28 फरवरी से ईरान के होर्मुज, जलडमरू, मध्य पर नियंत्रण के लिए इसराइल और अमरीका से संबंधित जहाजों की आवाजाही इस जलमार्ग से रुकी हुई है। अमरीका ने भी इस क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ब्रिटेन होर्मुज, जलडमरू, मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत HMS ड्रैगन तैनात कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात किया था। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज, जलडमरू, मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले खराब रूस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए उनके पसंदीदा नेता हैं जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर। श्री पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच रूस और वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमण की आशंका वाले MV होनियस क्रूज पर सवार सभी लोगों को 42 दिन तक निगरानी में रखने को कहा है। संगठन के वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डॉ. वैन किरखोव ने कहा कि वर्तमान में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 42 दिन के दौरान जहाज से उतरने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और कैनरी द्वीप समूह के निवासियों के लिए जोखिम कम है, जहां MV होनियस क्रूज आज पहुंच रहा है। इससे पहले MV होनियस क्रूज पर हंता वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी, जो अर्जेंटीना से पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका ने H-1B वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले से तय न्यूनतम वेतन में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन ने कहा है कि कम वेतन पर विदेशी कर्मी उपलब्ध न होने से अमरीकी नागरिकों के वेतन

0: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की भारतीय टीम ने मेजबान चीन को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ में हराया। भारत ने पहला सेट जीता लेकिन चीन ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर लिया। निर्धारित चार सेट के बाद स्कोर बराबर रहने के कारण शूट ऑफ कराया गया। भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण त्रिनिदाद में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों के 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विश्व दर्पण समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और आज का ये संगीत सफर हम तय करेंगे अपनी अपनी माँओं के साथ। श्रोताओं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, कहीं भी चले जाइए, देश विदेश इधर उधर, लेकिन अंत में सिर्फ एक गोद है जिसमें हमें पूरी दुनिया की सुकून एक साथ मिल जाती है। और वो गोद है हमारी माँ का गोद। दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी अपेक्षा पर टिका होता है, लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा है जिसमें माँ लेना नहीं बल्कि सिर्फ देना जानती है। अगर हम सफल होते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तब भी माँ खुश होती हैं और ये कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से कोशिश करेंगे। माँ की इसी ममता का तो कोई मोल नहीं होता, क्योंकि ये वो दौलत है जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिससे मिल जाती है उस वो फिर कभी गरीब नहीं होता। लेकिन श्रोताओं, आधुनिकता के आज के जमाने में माँ के काम में बहुत अंतर आया है। आज की माँ केवल घर संभालने वाली महिला नहीं रही, बल्कि वो एक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऑफिस भी संभालती हैं और घर भी संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखती हैं और परिवार की खुशियों का भी ख्याल रखती हैं। आज की माँ आधुनिक है, लेकिन उनकी ममता आज भी वैसे ही है। वो मोबाइल और इंटरनेट के युग में भी अपने बच्चे की आंखों का दर्द पढ़ लेती है। श्रोताओं, समय बदल गया है, दुनिया भी बदल गई है और आगे भी अनवरत बदलती ही रहेगी, लेकिन एक माँ की दुआ आज भी वही है जो पहले थी और आगे अनवरत भी वही रहेगी। कार्यक्रम फिल्म संगीत का

फिल्म हम साथ साथ हैं का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना हरिहरन, मिलिंद इंगले, संतोष और प्रतिमा की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं, एक दिन या कोई एक एपिसोड माँ के लिए समर्पित करना बिल्कुल नामुमकिन है। माँ शब्द की गहराई को नापना ही मुमकिन नहीं है। ये केवल एक रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पूरी कायनात होती है। एक बच्चा जब पहली बार अपनी आंखें खोलता है तो वो रोशनी नहीं देखता, वो रोशनी ही उसकी माँ का चेहरा होती है। माँ ही वो पहली आवाज़ है जिसे हम सुनते हैं, और वो पहला स्पर्श है जिसे हम महसूस करते हैं, और ये सब अभी आप भी महसूस कर रहे होंगे। रूह के रिश्तों में ये कैसा रिश्ता निभाया है, खुद भूखी रहकर मुझे निवाला खिलाया है। मेरी एक सिसकी पर जो पूरी रात नहीं सोती, उस माँ की ममता ने मुझे इंसान बनाया है। लोग ढूंढते हैं सुकून मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, हमने तो माँ के चरणों में सारा जहान पाया है। जब भी गिरी मुझ पर कोई मुसीबत की बिजली, माँ की हर एक दुआ ने हमेशा हमें बचाया है।

फिल्म लाडला का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, क्या हमने कभी सोचा है कि एक माँ की दिनचर्या क्या होती है? वो हमसे पहले जागती है और हमारे सोने के बाद सोती है। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती, ना उनके लिए कोई सीएल है, उनका कोई सैलरी भी नहीं, कोई वेतन भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, इस चीज के लिए उन्हें किसी से कोई शिकायत भी नहीं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले वो जागती है, जब हम उदास होते हैं तो बिना बताए वो समझ जाती है, जब हमें भूख लगती है और खाने का कुछ मन करता है तो हमारे बोलने से पहले ही उनका सवाल आता है, भूख लगी है, कुछ खाना है। दुनिया हमें हमारी सफलता से जानती है, लेकिन माँ हमें उस समय से जानती है जब हमारा कोई नाम तक नहीं था। याद कीजिए श्रोताओं, वो दिन जब आपकी माँ ने अपनी पुरानी साड़ी पहनकर आपके लिए स्कूल की नई ड्रेस खरीदी थी। याद कीजिए वो रातें जब वो गीले में सोई ताकि आप सूखे बिस्तर पर सो सकें। ये त्याग नहीं है श्रोताओं, ये एक साधना है। माँ एक ऐसी मोमबत्ती है जो खुद को जलाकर घर के कोने कोने को रोशन करती हैं। घुटनों से रेंगते रेंगते जब हम पैरों पर खड़े होते हैं, माँ की ममता की छाव में हम बड़े होते हैं। जमाने भर की ठोकरें हमें क्या गिराएंगी, माँ की दुआओं का कवच पहनकर ही हमने लड़ना सीखा है। कभी डांटा तो कभी प्यार से पुचकारा हमें, हमारी हर नादानी को हंस कर स्वीकारा उसने। थक कर जब चूर हो जाती है पूरी दुनिया की भीड़ में, तो सुकून मिलता है वहीं जहां आंचल पसारा हमारी माँ ने।

फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना आतिफ असलम की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और इस गीत को संगीत बद किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक आधुनिक समाज में जी रहे हैं, हमारे पास करियर है, काम है, जॉब्स हैं, दोस्त हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, लेकिन इन सब के बीच वो माँ कहीं पीछे छूट रही हैं। हम अक्सर कहते हैं, माँ आपको नहीं पता, आप नहीं समझेंगी, पर सच तो ये है कि जिसने हमें बोलना सिखाया उसे हम चुप रहने की सलाह दे रहे हैं, जिसने हमें दुनिया दिखाई उसे हम पिछड़ा हुआ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शायद आप समझेंगी नहीं, ये आज के ज़माने की बात है। माँ को आपसे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए श्रोताओं, उसे बस हमारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, उन्हें चाहिए कि हम उनके पास बैठें, उनका हाथ थामें और कहें, माँ आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। यकीन मानिए श्रोताओं, आपके ये चंद शब्द उनके जीवन की सारी थकान मिटा देंगे। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो माँ को शक्ति का रूप माना गया है, वो दुर्गा भी है जो बुराइयों से लड़ती है, वो अन्नपूर्णा भी है जो हमारा पोषण करती है, और वो सरस्वती भी है जो हमें हमारा पहला अक्षर सिखाती है। कहा जाता है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिस घर में माँ का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ खुद चल कर आती हैं, और जिस घर में माँ की आंखों में आंसू होते हैं वहाँ सुख शांति कभी नहीं टिकती। तो लिखते हैं कि लिखने को तो माँ पर पूरी उम्र कम है, बिना उसके तो ये सांसें भी मध्यम है, खुदा से बस इतनी सी गुजारिश है हमारी, हमारी माँ की उम्र में लिख दे जो मेरे दम है। फूलों की खुशबू और सुबह की लाली है हमारी माँ, सूखे हुए चमन की हरियाली है माँ, जिसके होने से घर घर लगता है, वरना ये पूरी दुनिया ही खाली है माँ।

फिल्म दसवें दानिया का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, कैलाश खेर की आवाज़ों में। गीत और संगीत दोनों ही कैलाश खेर के। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत FM के 102.4 MHz पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं।

जीवन में जब भी हम कहीं फंसते हैं या कोई भी मुसीबत आती है तो माँ सबसे पहले क्या कहती हैं? डरने का नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात किसी दवा से कम नहीं होती श्रोताओं। माँ हमारे अंदर आत्मविश्वास भरती हैं, हमें सिखाती हैं कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है, और जिसके साथ माँ की दुआएं हमेशा होती हैं उसके रास्ते की हर मुश्किल छोटी हो जाती है। क्योंकि माँ हमें सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है।

फिल्म यारियां का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना के की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और धुन बनाई है अनुपम आनंद ने। और कार्यक्रम के अंतिम सफर की ओर हम चल पड़े हैं श्रोताओं, लेकिन माँ का ये सफर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि माँ वो कविता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो संगीत है जो सिर्फ दिल से सुनाई देता, और वो छांव है जो जिंदगी की तपती धूप में भी हमें सुकून देती है। यदि इस दुनिया में सच्चे प्रेम का कोई रूप है तो वो माँ ही है श्रोताओं, क्योंकि माँ थकती नहीं है, माँ हारती नहीं है, माँ रोती ज़रूर है लेकिन हम बच्चों के सामने कभी टूटती नहीं है। इस मदर्स डे पर केवल हैप्पी मदर्स डे कहकर अपनी औपचारिकता पूरी मत कीजिएगा। अपनी माँ के पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए और उन्हें महसूस कराइए कि वे आपकी जीवन की सबसे अनमोल ताकत हैं, क्योंकि सच यही है, जिसके पास माँ है वो दुनिया का सबसे सबसे अमीर आदमी है। आज अपनी माँ को गले लगाइए, उनके संघर्षों को सलाम कीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वे आपके जीवन की सबसे कीमती इंसान है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, माँ की ममता दोबारा नहीं मिलती। और इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार और फिर 11:05 पर हम आपसे मिलेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ। 12:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भावगीत का और 12:30 पर होगा कार्यक्रम अंगना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौत खानोवा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं 11:05 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम।

0: could.
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना, श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज बेहद खास दिन है, आज है हैप्पी मदर्स डे, तो आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल मई के दूसरे रविवार को हम मदर्स डे मनाते हैं। माँ जो एक सिर्फ शब्द नहीं है, एक एहसास है जो हमारे हर दुख में साथ खड़ी रहती है और हमारी हर खुशी में सबसे ज्यादा मुस्कुराती है। जब हम छोटे थे तो माँ ने हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज भी जब जिंदगी में हम लड़खड़ाते हैं तो वही माँ हमें संभाल लेती है। माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती। वो खुद दर्द में होती है फिर भी हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया, क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, जिसमें ना कोई शर्त होती है ना कोई उम्मीद होती है।

अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ ही है जो हमें संसार में लाती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, जिंदगी के हर कदम पर हमारी जमीन तैयार करती है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। आज इस मदर्स डे पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ आपके साथ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आइए आज हम अपनी माँ को सिर्फ हैप्पी मदर्स डे ही ना कहें, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हैं।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी के शब्दों को संगीत से सजाया था विशाल खुराना ने। फिल्म थी नीरजा। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने हो सुकून ना रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पीपी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा

क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। इन शायरी के रचयिता हैं कैफी आजमी। श्रोताओं, हम आज बातें कर रहे हैं मशहूर गीतकार कवि कैफी आजमी की, जो गहन रोमांटिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक हिंदी फिल्मी गीतों के लिए जाने जाते थे। उनका असल नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव मीजवा में 14 जनवरी 1919 को इनका जन्म हुआ था। शुरुआत में उन्हें कविताएं पढ़ने का शौक लगा। गांव का माहौल सीधा साधा था। उनके भाइयों ने उन्हें प्रोत्साहित किया लेखन के लिए। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली

आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, खयाम के धुन पर। शब्दकार थे कैफी आजमी। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं मशहूर गीतकार कवि कैफी आजमी के बारे में। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं। 1974वीं पद्मश्री से सम्मानित कैफी आजमी की प्रभावी लेखनी ने इन्हें प्रतिष्ठित सम्मानों का हकदार बनाया। 10 मई 2002 को कैफी आजमी इस दुनिया से कूच कर गए। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे बहारें फिर भी आएगी फिल्म से। गीत कार्थिक कैफी याजमी, संगीतकार ओपी नैयर।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 MHz पर। गर्मी की छुट्टियां बच्चों और परिवारों के लिए पूरे साल का सबसे अधिक इंतजार किया जाने वाला समय होता है। और दोस्तों गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, जैसे ही स्कूल बंद होते हैं घरों में एक अलग ही उत्साह और रौनक देखने को मिलती है। कोई दादी नानी के घर जाने की तैयारी करता है तो कोई पहाड़ों और समुद्र तटों की सैर का प्लान बनाता है। यह सिर्फ घूमने फिरने का ही नहीं बल्कि नए अनुभवों सीख और रिश्तों को मजबूत करने का भी होता है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों को पढ़ाई के दबाव से राहत देकर उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को भी बढ़ाने का अवसर देती है, जिससे वे तरोताजा महसूस करते हैं।

लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे। हम आपके हैं कौन फिल्म से राम लक्ष्मण के धुन पर। शब्द रचना थी देव कोहली की।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियां सेलिब्रेट करने के बारे में, तो क्यों ना हम जानकारी साझा करें अपने शहर और आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में। हमारा समूचा कोल्हान प्रमंडल ही प्रकृति के सौंदर्य से सुसज्जित है। औद्योगिक शहर के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाला जमशेदपुर में पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दलमा हिल्स से चारों तरफ घिरे होने के कारण इसे पर्यटक हिल स्टेशन की संज्ञा भी देते हैं। हालांकि जमशेदपुर की वादियां किसी हिल स्टेशन से ज्यादा प्रकृति की गोद का एहसास कराती है। दलमा जंगल का प्राकृतिक सौंदर्य, चांडिल में स्थित पानी से लबालब डैम, शहर के हृदय में बसाया गया जुबली पार्क इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। इससे इतर 1912 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी पर्यटकों को खूब लुभाती है। टिस्को को अब तक टाटा स्टील के रूप में जाना जाता है। यह कंपनी औद्योगिक पर्यटन के लिए भी खास पहचान रखती है। हर साल हजारों लोग यहाँ के औद्योगिक ढांचे को देखने के लिए जमशेदपुर आते हैं। टाटा स्टील के अलावा टाटा मोटर्स सरेखी कंपनी ऐसे पर्यटकों को जमशेदपुर आने के लिए लुभाती है।

मयूरपुरी के शब्दों को संगीत से सजाया था प्रीतम ने, उदित नारायण की आवाज थी, फिल्म थी गरम मसाला। श्रोताओं, औद्योगिक संपूर्णता वाले हमारे शहर जमशेदपुर को प्रकृति भी पर्यटन की दृष्टि से धनी बनाती है। यहाँ की झील, नदियाँ, प्रदूषण मुक्त फिजाएं, चारों ओर फैली हरियाली कौन नहीं देखना चाहता। औद्योगिक और प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ आध्यात्मिक सैलानी भी हर साल आते हैं। इन सब के अलावा हाल के दिनों में टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रूरल टूरिज्म यहाँ की यूएसपी बन गई है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रूरल टूरिज्म को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। पूर्वी सिंहभूम के रूरल टूरिज्म की खास बात यह है कि सैलानी इसे सिर्फ देखते नहीं बल्कि इस परिवेश में कुछ दिन गुजार कर इसका अनुभव भी करते हैं। रूरल टूरिज्म के बहाने पूर्वी सिंहभूम में ट्राइबल टूरिज्म करने वाले विदेशी सैलानियों को भी खासा आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों के अलावा भारत के महानगरों में शोध कर रहे छात्रों के लिए भी पूर्वी सिंहभूम का ट्राइबल टूरिज्म किसी शोध की पूंजी से कम नहीं है।

आमाडोबी आर्ट विलेज इन दिनों जमशेदपुर में प्राइम टूरिज्म प्लेस के रूप में पहचान बना चुका है। इस पर्यटन स्थल की खासियत यह है कि यहां आपको गांव टच के अलावा लग्जरी सुविधाएं भी उपलब्ध मिलेंगी। बिजली पानी से लेकर फूडिंग तक की सर्विस यहां उपलब्ध है। आदिवासी गांव के थीम पर बनाया गया आमाडोबी आर्ट विलेज इसीलिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसे पूरी तरह देसी अंदाज में डिजाइन किया गया है। कच्चे मकानों के डिजाइन के घर और प्राकृतिक वादियों का एहसास इस आर्ट विलेज को खास बनाता है। साथ ही पोटका प्रखंड में स्थित हरिना मंदिर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। मंदिर पर बनी आकृतियों के लिए इस मंदिर की तुलना कई मंदिरों से की जाती है। दिल्ली के लोटस टेंपल की तर्ज पर बना है जमशेदपुर का साईं मंदिर। 2012 में बने इस साईं मंदिर ने बेहद कम समय में

बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। इस मंदिर के बाहर आपको हमेशा लोग सेल्फी देखते लेते दिख जाएंगे। पर्यटन के लिहाज से भी इस मंदिर की महत्ता काफी बढ़ गई है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे दोस्त फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, बीते 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस था। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही बच्चे को अपने गिरफ्त में ले लेता है। यह दो प्रकार का होता है, माइनर और मेजर। यह सिर्फ माता पिता के थैलेसीमिया कैरियर होने की वजह से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। थैलेसीमिया का इलाज कठिन है, लेकिन शादी से पहले अगर लड़के लड़की के खून की जांच करा ली जाए या गर्भावस्था के दौरान 4वें महीने में या उससे पूर्व चेकअप करा लिया जाए तो थैलेसीमिया जैसी वंशानुगत रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो जन्म से ही होता है। इसमें शरीर में लाल रक्त कण जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जिससे एनीमिया होता है। सामान्य लाल रक्त कण 120 दिन तक जीवित रहते हैं, जबकि रोग अवस्था में मरीज में 15 से 20 दिनों में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जागरूकता से बचाव संभव है। इसके लिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराना जरूरी है। HbA2 या HbLC टेस्ट से कैरियर का पता चलता है। गर्भावस्था में CBC जांच से 90% मामलों का पता चल सकता है। गर्भावस्था में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे अगर माँ कैरियर है तो पिता की जांच जरूरी है। दोनों कैरियर होने पर CBS और जीन टेस्ट करवा सकते हैं। 8 से 10 सप्ताह में भ्रूण की जांच से स्थिति पता चलती है। मेजर हो तो कानूनी रूप से गर्भपात संभव है।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे, दिल मांगे मोर फिल्म का। समीर की रचना थी, हिमेश रेशमिया के संगीत पर आपने सुना। और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर यहीं पर संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। मिलन में नैन सजल होते हैं, विरह में जलती आग, प्रेम है दीपक राग। जैसे पतंगा बिना बुलाए दीपक के पास आता है, परिणाम की परवाह उसे कहाँ, उसे तो बस आस है मिलन की, जिद है मिट जाने की।

मदन मोहन के संगीत पर ये गीत आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाजों में। फिल्म थी वीर ज़ारा। नैनों के बार को बस पूछिए मत क्या कहा जाए, नजरे आईना भी है जिसमें दिख जाती है चेहरे की रंगत और चेहरे के पीछे छुपी भावनाएं। नजरी किताबें भी है जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, धीरे धीरे ही असर डालती है ये नजरें दिल पर, खींच के तस्वीर को बिठा देती है दिल पर।

गर्व फिल्म का ये गर्व प्राइड एंड ऑनर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत पर। शब्द रचना थी शब्बीर अहमद की। दिल में हसरते जो है उसे तराने बनाकर ये लब बोल पड़े हैं कि वजह तुम ही तो हो हमारे दिल के सुनहरे अरमान की। आंखों में झिलमिलाती सपने सजाने की वजह तुम ही तो हो। मस्त ऊंची ऊंची उड़ानी दिल में हिलोरे ले रही है क्योंकि दिल में तुम्हारी चाहत की हवा गुनगुना रही है।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजी थी शंकर रहसौन। लॉय के धुन पर आप सुन रही थी जावेद अख्तर के बोल। फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना।

चाहत के अफसाने अनगिनत है, जहाँ धरती आकाश मिल जाते हैं, जहाँ नजदीकियों में भी दूरियों का एहसास होता है, जहाँ सब याद होते हुए भी भूल जाते हैं सब।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर आप सुन रहे थे प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत। बोलते SH बिहारी की और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भावगीत यहीं पर संपन्न हुआ।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

0: अंगना महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।
1: अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, माँ, माँ शब्द में ही समस्त सृष्टि का सार समाया हुआ है। दुनिया में अगर कहीं निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास का सजीव उदाहरण देखना हो तो वो माँ है। भारतीय संस्कृति में माँ को ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते थे, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने माँ को बनाया। माँ और उसका प्रेम किसी शर्त या उम्मीद पर आधारित नहीं होता। वो अपने संतानों के सुख के लिए अपनी नींद, अपनी खुशियां और यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं का भी हंसते हंसते त्याग कर देती है। एक बच्चे के लिए माँ उसकी पहली गुरु, पहली सहेली और सबसे बड़ी रक्षक होती है। माँ केवल कोमल ही नहीं बल्कि वक्त आने पर चट्टान जैसी मजबूत भी होती है। घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना हो या परिवार पर आए किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना हो, माँ हमेशा एक ढाल बनकर खड़ी रहती है। उसकी सहनशीलता ही परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखती है। बच्चा जो पहला शब्द बोलता है और जो पहली सीख पाता है वो माँ से ही तो मिलती है। वह केवल जन्म ही नहीं देती बहनों, बल्कि चरित्र का निर्माण भी करती है। एक माँ ही अपने बच्चों को नैतिकता, दया और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाती है, और ये सब आप सब भी महसूस करती होंगी। बहनों, माँ वो शीतल छाया है जो जीवन की चिलचिलाती धूप में हमें सुकून देती है। उनके चरणों में ही स्वर्ग का वास माना गया है। हमें उनके त्याग का सम्मान करना चाहिए और जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बेशक आज मातृत्व दिवस है, पर सच तो ये है कि मातृत्व दिवस हमारी संस्कृति में एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है। चलती फिरती आंखों से अजां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं पर माँ देखी है। मेरी माँ, आपकी माँ, हर किसी की माँ को हमारा आज के दिन शत शत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमने जाकर उनसे बातचीत की है, और आज हम सबसे पहले सुनते हैं मृदुला राजे के शब्द। इस मातृत्व दिवस पर क्या कहना चाहती हैं आपसे?
2: मैं हूँ मृदुला राजे। माँ एक माता मतलब ईश्वर का एक अवतार होती है, और जिसमें सृजन की शक्ति होती है, जो नवनिर्माण कर सकती है। वो अपने बच्चे को जन्म जो देती है उसको इस दुनिया में इस लायक बनाती है कि जो बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा कार्य कर सके। आज मुझे मेरी बेटी पर भी इतना ही गर्व है, एक माँ होने के बाद सामाजिक कार्य कर रही है, मेरे जैसा लेखन का कार्य कर रही है। वो एक अपने सक्षम लेखिका है और जो अपने माँ की विरासत आगे चला रही है, तो इसलिए मुझे बहुत मैं प्राउड करती हूँ। अब मुझे गर्व है कि ऐसी बेटी को मैंने जन्म दिया है, और एक माँ होने के नाते मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी माँ खुद एक ऐसी शक्ति थी, इसी महीने में उनकी जन्म शताब्दी है, और उन्होंने उस समय 100 साल पहले जिनका जन्म हुआ था उन्होंने एक बच्चों के लिए स्कूल चालू किया था। वो स्कूल वो अभी 75 वो बॉम्बे में है, स्कूल बाल विकास मंदिर, बच्चों का विकास करने के लिए स्कूल खुला होता, और बॉम्बे का जो थाना डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का वो बच्चों का लिए पहला स्कूल था उस जमाने में, 1949 में बनाया हुआ था। उसने उस स्कूल में सिर्फ माओं को मतलब महिलाओं को नौकरी दी थी, उनका विकास किया था, और उनके पद पद पर चलते चलते मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद।
1: और अब जो हमारी श्रोता आपके साथ जुड़ रही हैं वो हैं विनीता शाह।
3: सभी महिलाओं को, सभी माताओं को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मैं विनीता शाह, मैं भी एक माँ हूँ, और माँ होना कोई भी स्त्री में बहुत ही गर्व की बात होती है, और ये एक ऐसा अनुभव होता है ये हम बयां नहीं कर सकते। और आज मैंने अपनी, अभी मेरी माँ नहीं है तो मैं महसूस करती हूँ कि माँ का महत्व क्या होता है। माँ जो हमें कहती हैं वो अच्छे के लिए कहती हैं। कई बार हमें बहुत बुरा लग जाता है, हम नाराज हो जाते हैं, पर माँ जो कहती है वो हमारे बच्चों के लिए अच्छे के लिए कहती है। और माँ का त्याग, तो कहा जाता है कि आप अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी रख दें तो माँ का हम कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं माँ बाप को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, और पेरेंट्स से उन लोग एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी बहुत आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें कई बार माँ को ये भुगतना पड़ता है, माँ को पिताजी से उसके अपने पति से झूठ बोल के कुछ करके बच्चों की जो इच्छाएं रहती है कामना रहती है वह माँ पूरी करती है। और माँ ऐसे होता है कि अगर पिता का साया उड़ भी जाता है तो माँ ऐसी चीज़ है कि दूसरों के घर में बर्तन मांझ कर भी अपने बच्चों का पेट पालती है और बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हैं, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं। और माँ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान से भी पहले आती है माँ। और मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ, मैंने अपने बेटे से कहा कि मदर्स डे था, सभी के बच्चे माँ को विश कर रहे हैं और मदर्स डे मना रहे हैं, तो मेरे बच्चे ने जो मुझे शब्द कहा तब मुझे लगा कि सच में मैं माँ हूँ और मेरे बच्चे इतने अच्छे मेरे संस्कार हैं। मेरे बेटे ने कहा माँ ये तो मदर्स डे एक दिन दूसरों के देश का है, मेरे लिए तो रोज़ मदर्स डे है, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैंने भगवान की तस्वीर को नहीं, मैं आपकी तस्वीर को पैर छूता हूँ। मेरी माँ के लिए यही अनुभव है, मेरी माँ थी उनके गुणों का भंडार थी, तो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि मैं मेरी माँ जैसी नहीं बन पाई। मेरी माँ मतलब जमाने पहले की बात है, जब 60-65-70 साल पहले की बात बता रही हूँ, माँ जो थी वो ये चाहती थी कि मेरी बेटी सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, वो अगर परिस्थिति नहीं भी थी तो वो अच्छे अच्छे अपनी साड़ियों के मेरे अच्छे कपड़े बना के पहनाती थी, और सब मेरे कपड़े सब जो भी है रहता था मेरे सब बचपन से वो बहुत ही मेरे केयर करती थी और मेरे लिए अपने हाथों से रात के बैठ के कपड़े बनाया करती थी। वो दिन मुझे याद आता है कि माँ का वो जागना, वो त्याग और उनका जो समर्पण जो था वो सच में मैं भी अपने बच्चों को नहीं दे पाई थी। और आज मेरी बेटी बहुत कुछ मेरे सपने पूरे कर रही हैं, जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा ना डांस ड्रामा यानी फिल्म लाइन में जाना था, मुझे शौक़ था, तो वो मेरा पूरा नहीं हुआ क्योंकि तब जमाना था, जाने नहीं देते थे, सब कुछ था। पर हुआ क्या कि मेरी बेटी वो मीडिया लाइन में गई और बॉम्बे में वो डायरेक्टर थी, अभी रोज उसके फिल्म लाइन से जुड़ी और मेरी इच्छाएं पूरी की। मैं पहले फॉर्मिस्ट थी, तो मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, मेरी फॉर्मिस्ट्री अधूरी रह गई बहुत बड़े परिवार में आने पर मेरी बेटी का मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतनी थी कि मेरे में उतना नहीं था, और आज मेरी बेटी मेरे से सवा सेर निकली है, मेरे से हर चीज़ में वो आगे है और वो मेरे सपने पूरे कर रही है। मैंने जो अपने जिंदगी में नहीं किया, आज मेरी बेटी बहुत बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है और वास्तुशास्त्री है, हीलिंग मास्टर है। तो आज बोलते हैं ना कि आपके बच्चे आपके सपने पूरा करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं भी अपने बच्चों की तरह मेरी माँ के सपने पूरे की, क्योंकि उस ज़माने में ये था मेरी माँ का कि मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, तो मैंने मेरी माँ का सपना पूरा किया, हालांकि मुझे शादी जल्दी नहीं करनी थी, फिर भी मैंने अपनी माँ का सपना पूरा किया और बहुत कम उम्र में शादी हो गई। और माँ का आशीर्वाद है और बच्चों का प्यार है, आज मैं जीवन में बहुत सफल हूँ। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, आप भी अपने आप पे मातृत्व होने का गर्व महसूस कीजिए।
1: बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी माँ और अपने बच्चों के साथ के अपने अनुभव हमसे साझा किए, और अब जो अनुभव हमसे साझा कर रही हैं वो हैं जया।
4: नमस्कार, मैं प्राची, मैं मुंबई के एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम के तहत मैं जमशेदपुर में अपनी माँ के घर में रह रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपनी माँ की छाया में रहना मेरे लिए संभव हो पाया है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बचपन से मेरे हर एम्बिशन को पूरा करने में उनका योगदान रहा है, और आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, एक सक्षम इंडिविजुअल बन चुकी हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपनी माँ की अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। मैं उसी तरफ प्रयास करती रहती हूँ निरंतर, जैसे जो भी मेरी माँ की ख्वाहिशें हैं उन्हें मैं उनमें मैं उनका पूरा साथ देती हूँ। मेरी माँ लेखिका है, आज के ज़माने में टेक्निकल जो भी उनको मदद लगती है उसमें मैं उनका पूरा योगदान करती हूँ। इसी के तहत मैंने मेरी माँ के 2 किताबें मराठी में प्रकाशित करने में उनका पूरा पूरा सहयोग किया है, पूरा टेक्निकल मदद उन्हें मैंने की है। तो ये मेरा एक छोटा सा एक ज़रिया है कि मैं अपनी माँ को उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल सकूँ जिस तरह उन्होंने मुझे बड़ा किया है, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोल सकूँ बस। और जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, अपनी माँ का नाम रोशन करती रहूँ, यही मेरा सपना है। धन्यवाद।
1: वाकई में हम हमारी माँ से बिना पूछे और उन्हें बिना बताए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और अगर वो ना सुने कभी तो खींच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर वक्त हमारी माँ का साथ चाहिए होता। और माँ जो होती है, आप कितने भी गुस्सा हो जाएं पर वो बर्दाश्त करती है और गुस्सा करके भी हमसे प्यार करती है। कैलाश खेर की आवाज़ में आइए सुनते हैं 10 वेदानिया का ये खूबसूरत प्यारा सा गीत।

0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस।
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

0: बहनों, 8 मई 2026 को हमने मनाया विश्व थैलेसीमिया दिवस, और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस का विषय उन लोगों पर केंद्रित था जो इस बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद चिकित्सा व्यवस्था की नजरों से दूर हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 का थीम रहा हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। अब और छिपा नहीं, अनचाहे मामलों की पहचान, अनदेखों का समर्थन। इस थीम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सामने लाना है जो थैलेसीमिया के वाहक हैं या जो बीमारी के बावजूद सही निदान और इलाज के बिना रह रहे हैं। भारत के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अक्सर दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी कहा जाता है। इसी दिशा में अनुराग फाउंडेशन के द्वारा आयोजित थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए शीघ्र पहचान और रोकथाम को समर्पित जागरूकता कार्यक्रम पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवा रहे हैं। दयानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में, जहां फाउंडेशन के विभिन्न सहयोगी और डॉक्टर्स मौजूद थे, वहां सबसे ज्यादा दिल जिसने जीता और जिसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से थैलेसीमिया पीड़ितों के जीवन को चित्रित किया, वो थी नृत्य नाटिका अनकही दास्तान, जो फर्स्ट स्टेप स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस रंगारंग नृत्य नाटिका के संपादित अंश प्रस्तुत हैं, आइए सुनिए।
1: बहुत हसीन है ये जिंदगी, इसमें कोई शक नहीं, पर अब इस पर पहले सा हमारा हक नहीं। कभी कागज की कश्ती थी, कभी बेफिजूल सी बातें, अब तो बस कतारों में गुजरती है ये रातें। जाने क्या सोचकर खुदा ने हमें बड़ा किया, एक मासूम परिंदे को पिंजरे में खड़ा किया। वो खिलौने, वो मिट्टी, वो बेपरवासी हंसी, सब कहीं खो गई, बस रह गई एक बनावटी खुशी। और फिर जिंदगी हमें बिना बताए एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन बच्चों की सच्चाई है जो चुपचाप रोज

या आपने कभी ये सोचा है कि ये छोटी सी सांस किसी की पूरी जिंदगी हो सकती है? ये कहानी है उन बच्चों की जो जीते तो हैं, पर हर दिन किसी और के ब्लड के सहारे। कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, पर उनकी सांसें उतनी तेज साथ नहीं दे पाती, और तब एक सिंपल सी कहानी एक संघर्ष बन जाती है।

0: जब खुशी डर में बदल जाती है तब शुरू होती है असली कहानी। एक दिन सब कुछ ठीक था और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं पर हर दिन महसूस होती है। एक ऐसी सच्चाई जहां जिंदगी हर महीने एक नई उम्मीद पे टिकी है। एक बच्चा जो जीना चाहता है पर जीने के लिए उसे हर बार किसी और के ब्लड की जरूरत पड़ती है।
1: तू सफर मेरा

हॉस्पिटल के दरवाजे पर अक्सर कहानियां बदल जाती हैं। एक रिपोर्ट एक सच्चाई लेकर आती है जो सिर्फ कागज पर नहीं जिंदगी पर लिखी होती है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जो जन्म से साथ होता है और जिंदगी भर साथ छोड़ता नहीं। इसमें एक बच्चा खुद से नहीं किसी और के ब्लड से जीता है। हर महीने एक नई लड़ाई, हर बार एक नई उम्मीद और हर बार एक सवाल, क्या इस बार कोई मदद करेगा। बीमारी से ज्यादा लोगों की सोच दर्द देती है, पर हर कहानी में एक नई रोशनी होती है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी उम्मीद जगाती है। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाती है, और वही मदद एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। हर 30 दिन में एक बच्चा किसी अनजान इंसान के ब्लड से जीता है। सोचिए, अगर वो एक इंसान आप हो तो एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज नहीं तो कब? अगर आप नहीं तो कौन? टेस्ट कराओ, ब्लड डोनेट करो और एक जिंदगी को जीने का मौका दो, क्योंकि कुछ कहानियां छुपी नहीं रहनी चाहिए। हिडन नो मोर।

0: इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री बहराम बोधनवाला, श्रीमती रूबी बोधनवाला, कपिल मोदी, स्वस्तिका बासु, अतुल भटनागर, डॉक्टर एनके दास, डॉक्टर मंदार शाह, डॉक्टर अरविंद आर्या और डॉक्टर विनीता सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए थे और साथ ही थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे भी वहां उपस्थित थे। थैलेसीमिया पर प्रकाश डालते हुए फाउंडेशन से जुड़ी सुकन्या दास कहती हैं,
1: देखिए थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो ऐसा नहीं है कि आपके और किसी मेरे छूने से फैलता है, वो एक बच्चे में जन्म से ही आ जाता है। तो इसीलिए युवा पीढ़ी है, मैं उन लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों आप जब शादी करने जाते हो या विवाह का प्रस्ताव आपके माता पिता आपके पास लेके आते हैं तो कृपया आप कुंडली से ज़्यादा ब्लड टेस्ट कराएँ। अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है या थैलेसीमिया है तो आपके जो पार्टनर हैं उनको थैलेसीमिया नहीं होनी चाहिए, और अगर आप दोनों को थैलेसीमिया है तो बहुत सारे चांसेस हैं, मतलब 90% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि थैलेसीमिक बच्चा ही होगा।
0: तो मतलब कि थैलेसीमिया के लक्षण या थैलेसीमिया की शुरुआत जो है वो माइनर रूप में हर किसी में मौजूद है?
1: जी नहीं, वो हर किसी में मौजूद नहीं है, वो मैंने कहा कि वो हो सकता है क्योंकि हम लोग ब्लड टेस्ट कराते समय तो हमको पता चल जाता है कि मेरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम है, या कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन जो थैलेसीमिया के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है वो बहुत खास होता है, तो आपको जा करके थैलेसीमिया लेवल को चेक करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना है, ये बिल्कुल अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं।
0: तो इस तरह से अगर ब्लड टेस्ट कराएं हम थैलेसीमिया का, हर कोई अगर करा लें, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो हम आने वाले समय में अनुवांशिक बीमारी को रोकने का प्रयास कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, बस यही जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं कि थैलेसीमिया की रोकथाम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम तो उन बच्चों की मदद कर सकते हैं कि जिनको थैलेसीमिया है, तो जागरूकता सबके जागरूक होने से ही फैलेगा।
0: मतलब ये जागरूकता इसलिए भी फैलानी है ताकि हर व्यक्ति जो है इसके लिए काम करे, इसके बारे में जागरूक हो, ताकि इस रोग को आगे बढ़ने से थैलेसीमिया और ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा सकें और आने वाले समय में हमारा देश और हमारा जो विश्व है वो थैलेसीमिया से मुक्त हो सके।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जागरूक रहिए, ब्लड टेस्ट कराइए और अपने जो वातावरण है, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को इसके बारे में जागरूक कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुकन्या जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहनों, ये था अनुराग फाउंडेशन द्वारा आयोजित थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए शीघ्र पहचान और रोकथाम को समर्पित जागरूकता कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता थी एस्थर चंपी। तो श्रोताओं, याद रखिए, थैलेसीमिया को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, बस जरूरत है कि हर कोई जागरूक हो और हर कोई जाँच करवाए ताकि इस अनुवांशिक बीमारी को हम हरा सके। याद रखिए, विवाह पूर्व स्क्रीनिंग, गर्भावस्था के दौरान जांच जरूरी है। गांवों और कस्बों में जागरूकता फैलाना कि ये एक अनुवांशिक विकार है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं, जरूरी है। कई बार लोग वाहक होने को बीमार होना समझ लेते हैं। लोगों को ये बताना है कि एक वाहक सामान्य जीवन जी सकता है, बस उसे सही जानकारी की जरूरत है। जरूरी है बहनों कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और इसमें सामाजिक समर्थन की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन मरीजों को हर 2 से 4 हफ्ते में रक्त की आवश्यकता होती है। इसलिए युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। स्कूलों और दफ्तरों में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों और वयस्कों के लिए एक समावेशी माहौल तैयार करना चाहिए ताकि वे खुद को समाज से अलग महसूस न करें। जब परिवार और समाज की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिला दूं बहनों कि 15 मई को हम मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। माँ अगर पहली गुरु है तो परिवार हमारी पहली पाठशाला है, और हमारे देश भारत में तो संयुक्त परिवार का चलन रहा है, और संयुक्त परिवार केवल रहने का एक तरीका नहीं बल्कि एक सूक्ष्म समाज है जहां संस्कार, सुरक्षा और सहयोग का आदान प्रदान होता है। तकनीक के इस युग में जहां डिजिटल दूरी बढ़ रही है, वहीं सही उपयोग से इसी तकनीक को परिवार को जोड़ने का सेतु भी बनाया जा सकता है। बहनों, परिवार को जोड़ने के लिए हम सबको कुछ तरीके अपनाने होंगे ताकि हमारा परिवार मजबूत परिवार बने। क्योंकि ये ही समाज की रीढ़ होते हैं। परिवार में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों के विचारों को भी सुनना और उन्हें सम्मान देना जरूरी है। जब हर सदस्य को महसूस होता है कि उसकी अहमियत है तो जुड़ाव गहरा होता है। रिश्तों में अनबन होना स्वाभाविक है, लेकिन मन मुटाव को लंबा ना खींचें। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना और क्षमा करना ही परिवार को टूटने से बचाता है। त्योहारों को साथ मिलकर मनाना, पारिवारिक पिकनिक पर जाना या पुराने किस्से साझा करना परिवार की जड़ों को मजबूत करता है। और वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
2: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार। 1:10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगावेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहित शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक तारीख है। श्री मोदी ने कहा कि साहस और शौर्य की यह विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। एक रिपोर्ट।
2: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष

0: क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना चतरा जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ जिले के किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। सिमरिया अनुमंडल के इचाक पंचायत के नवाटाड़ गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। किसान मित्र संजय कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों ने डीजल और पेट्रोल पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब किसान निर्भीक होकर खेती करते हैं।
2: प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए अति आवश्यक योजना है। इस योजना से किसान खेती में तरक्की किया है, अच्छे से खेती कर पा रहा है, पानी की सुविधा भी अच्छी हो जा रही है और न तो डीजल का खपत है न पेट्रोल का खपत है और मोटर भी लगाने की जरूरी नहीं है, मोटर कंपनी लगा के देती है, खेती अच्छे ढंग से हो रहा है।
1: जमशेदपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर अनुराग फाउंडेशन द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम थी अब छिपे नहीं, जिसके तहत अनपहचाने मरीजों की पहचान और पीड़ित परिवारों को सहयोग देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, अभिभावक, चिकित्सक और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची ने इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता बताई।
3: आज के समाज को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले ताकि आगे इस तरह का बच्चा ना हो, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो लाइफ टाइम उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लड चलाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रखने का। जैसे हमारे अदर बच्चे हैं वैसे हम लोग भी है, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो सारे काम कर सकते हैं, तो प्लीज हमें किसी से तुलना ना करें, हम भी एज अ स्पेशल है।
1: खूंटी गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भालू टोली के पास रनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक, खलासी और डोडा खरीददार मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक माँ ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आपका स्नेह, समर्पण और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृत्व भाव की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा ने सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने की पीड़ा को समाज सेवा और शिक्षा की मिसाल में बदल दिया है। उनका कहना है कि विद्यालय के हर बच्चे में उन्हें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। उन्होंने बच्चों को जीवन रक्षा में हेलमेट के महत्व को लेकर जागरूक किया।
4: कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं स्कूल में ही कान पकड़ के एक चपत लगा दे, अब पता नहीं क्यों मेरा एक आध चपत लगाया वो उन लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता कि मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। इसलिए जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो तरीके से चलाओ, इतनी तेज ना चलाओ कि कोई दुर्घटना घट जाए।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के मंडरोडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से

एक युवक की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम गोरहर में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। पहली घटना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में चार वाहनों की टक्कर से हादसा हुआ। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप संविधान और उपनियमों को अपनाने के लिए 24 मई को विशेष आम सभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी, जिसमें संविधान संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण दो के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया। टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

इस गीत को रचा था प्रिया सरैया ने, उन्हीं की आवाज में आप सुन रहे थे हूर फिल्म का ये गीत। संगीत दिया था सचिन जिगर ने। अगला गीत आइए सुनते हैं रेड टू फिल्म का, आवाज है जुबिन नौटियाल की। रोचक कोहली के संगीत पर लीजिए सुनिए मनोज मुंतशिर की रचना।

0: हाउसफुल फाइव फिल्म का ये गीत था। आवाजें थी मधुवंती वागजी, सुमंतो मुखर्जी की, शब्द रचना थी कुमार की, संगीत दिया था वाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क

विशाल मिश्रा और साथियों की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे मेट्रो इन दिनों फिल्म का। शब्दकार थे नीलेश मिश्रा, संगीतकार प्रीतम। अगला गीत आइए सुनते हैं बी हैप्पी फिल्म से सुनिधि चौहान और मीका सिंह की आवाज में। शब्द रचना है प्रणव वत्स, हर्ष उपाध्याय और सुकृति भारद्वाज की। संगीत दिया है हर्ष उपाध्याय ने।

डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराग सैकिया, रोमी, वरुण जैन और कौसर मुनीर के स्वर में। गीतकार थे कौसर मुनीर, संगीत दिया था अनुराग सैकिया ने। अगला गीत आइए सुनते हैं सितारे जमीन पर फिल्म से। अरिजीत सिंह और शरीबा पारुलकर ने इसे गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

गीत और संगीत आवाज विशाल मिश्रा की थी। फिल्म थी आंखों की गुस्ताखियां और ये थी फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 से, रोज का समाचार 3:00, 3:05 पर हम लेकर आएंगे चंद गीत लकी अली की आवाज में, कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:15 से, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा पंच परगनिया लोकगीत, कलाकार होंगे कृष्ण चरण कोयरी। उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय होगा 3:30, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे दादरा और चैती, कलाकार होंगे विदोषी शोभा गुट्टू। 3:45 पर लोकगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे मैथिली लोकगीत, कलाकार होंगे नवेंदु कुमारी। शाम 4:02 से सुनिएगा सामुदायिक गीत पाठ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:00 वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रसारित होंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़

0: Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP legislature party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।

0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाटु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி சபத் லி ஹே இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ் ஆதவ் அர்ஜுன் என் ஆனந்த் செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रजित कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
4: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला MV होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे राजा और रंक फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, आज मदर्स डे है। यह शब्द अपने आप में निस्वार्थ प्रेम, त्याग का मंदिर, वात्सल्य का सागर, सहनशीलता का अंबार, माँ न जाने क्या कुछ। माँ एक अक्षर का शब्द लेकिन अभिव्यक्ति का सबसे मर्मस्पर्शी संबोधन। माँ के लिए क्या कहा जाए, वह शक्ति, वह शांति, वह सुकून, वह भावना अंत नहीं है। माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। माँ ही है जो आंसू पोछती है, लोरी सुनाती है, भूख की चिंता करती है और जीवन में मुकाम के लिए प्रार्थना भी।

लता मंगेशकर के स्वर में ही ये गीत आप सुन रहे थे। मदन मोहन के संगीत पर शब्द कार्थी कैफी आजमी, फिल्म थी महाराजा।

आपकी कसम फिल्म का ये नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीत दिया था आर डी वर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, फिल्म थी आरोप, शब्दकार थी माया गोविंद, संगीतकार भूपेन हजारिका।

आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था, रवि ने संगीत दिया था। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और नौ सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमार डीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने असम के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज मदर्स डे पर मां की ममता को सभी लोग याद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके स्नेह तथा मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने मदर्स डे पर सभी मतदाताओं को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर कल जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में चालक को लकड़ी लदे वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है।
2: गश्ती पार्टी के द्वारा उसको जाके जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि लकड़ी का अवैध रूप से काफी ज्यादा संख्या में वो काट करके लेके जा रहा था और फिर वहां पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। लकड़ी को जब्त किया गया और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था, जो ड्राइवर के रूप में गाड़ी भी चला रहा था, उसको भी हिरासत में लिया गया।
0: हजारीबाग जिले के बरकट्टा में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित मालवाहक वाहन पुलिया के नीचे जा गिरा जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घटना में गोरहर गांव में चार वाहनों की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10 सुपर स्पेशलिस्ट विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 90। विभागों के नाम हैं नेफ्रोलॉजी 10, कार्डियोलॉजी 10, न्यूरोलॉजी 10, गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी 8, न्यूरोसर्जरी 20, यूरोलॉजी 4, कार्डियोवेस्कुलर थोरिक सर्जरी 4, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एवं वर्ण 4, ऑन्कोलॉजी 10, ऑन्कोलॉजी सर्जरी 10। अभ्यर्थी की उम्र 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष, बीसी 1 और 2 के लिए 47 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष, महिला के लिए 48 वर्ष, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 45 वर्ष है। राज्य सरकार के कर्मी के लिए उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सेवानिवृत्ति की उम्र 67 वर्ष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के 48 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवश्यक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास न्यूनतम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। अधिकतम आयु में छूट का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासी को दिया जाएगा। चयन 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, पार्ट बी में अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और पार्ट सी में हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मई 2026 है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च करें https://www.patnahighcourt.gov.in। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गीत। कलाकार हैं लकी अली।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे चंद गीत, कलाकार थे लक्की अली। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं पंच परगनिया लोकगीत। कलाकार हैं कृष्णचरण कोइरी।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंच परगनिया लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत दादरा और चैती। सबसे पहले सुनते हैं दादरा। कलाकार हैं विदुषी शोभा गोटू।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली लोकगीत और कलाकार हैं नवेंदु कुमारी। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी नवेंदु कुमारी वासाथी। तो इसी के साथ ही हमारा ये लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची से आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और नौ सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा, जल और बिजली का संरक्षण आर्ट ऑफ लिविंग है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। असम में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। श्री नड्डा ने बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। बाद में श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। 12 मई को दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिवपी नेहा तिर्की शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक्सटिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तत्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में खूंटी, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं सामुदायिक गीत पाठ के अंतर्गत असमिया लेसन।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत? अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मिट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है।

तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे, ए माती रे मोरो मोते, माती के सुमिलो, माती के सुमिलो, माती के सुमिलो हो गया ना यहाँ तक। आगे लिखो। ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी आकी आकी दोबारा आकी आकी आकी मोसी लो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे, इसके आगे है आहा आहा, मातीर बुकुट, मातीर बुकुट, मोनोर मालोती, बूटोलो, मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी, इतना हो गया ना। आगे हुकुमार थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना, हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर नौतून दृष्टि
ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना, दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ, आगे ना। अच्छा ठीक है, गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिएगा।

आगे ना समझे। अब यहाँ तक का बोलेंगे शुरू से, 1 2 3 4। दो बार

abu parbo na mote आगे इतने समझे आगे पहला अंतराल हो

ऐसे बोलना है एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना, खून दौड़ते लो, एक दो तीन चार।

0: बार बोलना है और धीरे धीरे आवाज हल्की करते चले आना। एक बार तो
1: मारो माते,
0: दूसरा हल्का बोल शुरू से लेंगे सारा गाना, है ना। एक दो तीन चार।

0: डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: संदीप चौटा ने। कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना, आइए अब सुने इसी कार्यक्रम का अगला गीत।
1: दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लटक रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले, समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन भंग और कर्म दंग, मन

अतरंगी रे फिल्म के इस गीत के लिए स्वर था हरिचरण शेषाद्री और श्रेया घोषाल का, इरशाद कामिल थे इस गीत के शब्दकार, संगीतकार ए आर रहमान।

फिल्म अकीरा के इस गीत को गाया था सुनिधि चौहान और साथियों ने। मनोज मुंतशिर थे इसके रचनाकार, संगीतकार विशाल शेखर।

ये आवाजें थी वरुण गोबर और श्रेया घोषाल की। मालिक फिल्म के लिए अमिताभ भट्टाचार्य इसके शब्दकार थे, संगीतकार थे सचिन जिगर। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने को है प्रादेशिक समाचार मुख्यांश। सुनिएगा रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला भी रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिरकी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 MHz पर।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: शाम के 5:04 हो चुके हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी, आज अंग्रेजी में यूथ टाइम्स।

यूथ टाइम्स, यह था युवा साथियों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। आज आपने सुना अंग्रेजी में। कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। शाम के 5:30 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने।

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम दांतों की सामान्य सुरक्षा कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक भेंट वार्ता सुनवाएंगे। साथ ही कुछ फिल्मी गीतों के माध्यम से हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे और कौशल विकास योजना से किस तरह से आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, इस संदर्भ में भी हम बातचीत करेंगे। पर इन सबसे पहले आइए हम बात करते हैं अनुशासन कार्यस्थली का असली संस्कार, इस विषय पर चर्चा करते हैं। श्रमिक मित्रों, किसी भी कार्यस्थल की पहचान केवल उसकी बड़ी इमारतों, आधुनिक मशीनों या ऊंचे पदों से नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले लोगों के व्यवहार और अनुशासन से होती है। अनुशासन केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी, समय की पाबंदी, ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पण का दूसरा नाम है। कहा गया है, जहां अनुशासन है वहां प्रगति निश्चित है। आज की प्रतिस्पर्धी दौर में हर संस्था चाहती है कि उसका कार्य समय पर हो, गुणवत्ता बनी रहे और टीम में सकारात्मक माहौल भी हो, और ये सब तभी संभव है जब कार्यस्थल पर अनुशासन हो। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि बेहतर कार्य संस्कृति और जिम्मेदार व्यवहार से उत्पादकता तथा कार्यकुशलता बढ़ती है। श्रमिक मित्रों, सोचिए, यदि किसी कार्यालय में कर्मचारी समय पर ना आए, अपने कार्य को गंभीरता से ना ले, वरिष्ठों का सम्मान ना करे या आपसी तालमेल ना हो, तो वहाँ काम की गति कैसी होगी? निश्चित रूप से अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए अनुशासन किसी भी कार्यस्थल की आत्मा है। अनुशासन का सबसे पहला रूप है समय की पाबंदी। समय पर पहुंचना ये दर्शाता है कि हम अपने कार्य और संस्था का सम्मान करते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है जिम्मेदारी की भावना। जब कोई कर्मचारी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता है, तब संस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है। अनुशासित व्यक्ति केवल अपना काम ही नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। श्रमिक मित्रों, कार्यस्थल पर अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियम नहीं है, इसका अर्थ है एक दूसरे का सम्मान करना, टीम भावना बनाए रखना और सकारात्मक वातावरण तैयार करना। आज मानसिक तनाव और कार्य के दबाव के दौर में ये और भी आवश्यक हो गया है कि कार्यस्थल पर स्वस्थ और सम्मानजनक वातावरण हो। बेहतर कार्य संस्कृति कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों को मजबूत करती है। अनुशासन सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। विशेषकर उद्योगों, कारखानों और तकनीकी संस्थाओं में सुरक्षा नियमों का पालन जीवन की रक्षा करता है। छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे के कारण बन सकती है। श्रोता मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अनुशासन को बोझ नहीं, बल्कि अपने संस्कार का हिस्सा बनाएं। यदि हम अपने कार्यस्थल को परिवार की तरह माने, अपने दायित्वों को समझें और ईमानदारी से निभाएं, तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमेगी। आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि हम समय का सम्मान करेंगे, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे और अपने कार्यस्थल को अनुशासन, सम्मान और सहयोग की मिसाल बनाएंगे। श्रमिक मित्रों, ये जान लीजिए कि अनुशासन ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। इन बातों के बाद अब आइए एक फिल्मी गीत का आनंद लेते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये फिल्म सौतन का ये गीत है। गीतकार हैं सावन कुमार टॉक और संगीतकार हैं उषा खन्ना। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रमिक मित्रों, आप अपने दांतों की सामान्य सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हम आप लोगों को एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राखी और इनसे बातचीत कर रही हैं स्नेहलता।
3: श्रोता साथी, हमारा शरीर ईश्वर की एक अमूल्य देन है। ईश्वर प्रदत्त शरीर की देखरेख की जिम्मेवारी हमारी होती है। यूं तो हम शरीर के अंगों का खास तौर से चेहरा, बाल, त्वचा पर विशेष ध्यान देते हैं, पर एक सबसे जरूरी अंग है दांत। हमसे वो उपेक्षित हो जाता है, या यूं कहें कि जितनी तवज्जो हमें देनी चाहिए हम नहीं दे पाते। दांतों की देखरेख से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोताओं, आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राखी को, जिनसे हम बातचीत करेंगे श्रमिक अपने दांतों की सामान्य सुरक्षा कैसे करें इस विषय पर। तो डॉक्टर राखी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर राखी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों की जब सामान्य देखभाल की बात आती है तो इसका क्या अभिप्राय है, सामान्य देखभाल से हम क्या समझते हैं?
4: दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे काफी देखभाल की जरूरत है। दांत भोजन के चबाने के काम में भी आता है। दांत पाचन तंत्र में भी एक अहम भूमिका निभाता है। चेहरे की खूबसूरती पर भी दांत एक अहम भूमिका निभाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि दांत व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, और ऐसे में दांतों की देखभाल पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दांतों की कुछ समस्या जो पहले 40 उम्र पार करने के बाद नजर आती थी, अब कम उम्र में नजर आ रही है। तमाम जागरूकता के बावजूद भी हम दांतों पे उतना ध्यान नहीं देते जितना कि जरूरी है। यही वजह है कि युवाओं में दांतों में सड़न, सूजन एवं दर्द के मामले काफी बढ़ रहे हैं। दांतों की बीमारी हमारे दिल तक को भी प्रभावित करती है।
3: अच्छा।
4: बदलते वक्त के साथ हमारी जीवन शैली बदली, मगर नहीं बदला तो दांतों की उपेक्षा करना।
3: डॉक्टर राखी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम दांतों की उपेक्षा कर देते हैं, और या कहें कि जो खान पान हम कर रहे हैं उनकी जो शैली है, शायद वो भी वजह है दांतों की सड़न की।
4: जी बिल्कुल।
3: तो दांतों की बात आती है तो हम हमेशा कहते हैं कि ब्रश, बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चों को ब्रश कैसे करना चाहिए, तो आप आज हमें बताइए कि दांतों में ब्रश करने का सही तरीका क्या है?
4: यह तो हम सब जानते हैं कि ब्रश करना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और लोग ब्रश करते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि जो सही तरीके से ब्रश करते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है और हम अच्छे से दांतों की सफाई करें। ब्रश का ध्यान रखें, सबसे पहले आप अपने ब्रश को अच्छे से साफ कर ले और समय समय पर उसे बदलते रहे, ये बहुत जरूरी है। साथ ही सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें, न तो ज्यादा बड़ी न तो ज्यादा छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें, और वैसे ब्रश का इस्तेमाल करें
3: सॉफ्ट, मतलब जो आपके दांतों पे
4: ज्यादा रगड़ नहीं पाए,
3: रगड़ ना हो। हार्ड ब्रश का यूज
4: नहीं करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे दांतों की सफाई कर सकते हैं। स्टेप वन,
3: ब्रशिंग कैसे करते हैं?
4: हाँ, पहला स्टेप में आता है कि ब्रश करने से पहले ब्रश को अच्छे से साफ कर ले और कम मात्रा में टूथपेस्ट लगाएं। ज्यादा मात्रा में टूथपेस्ट लगाने से ज्यादा झाग पैदा होगी और ब्रश करने में कठिनाई होगी।
3: अच्छा अच्छा। लोग सामान्यतः सोचते हैं कि शायद ज्यादा पेस्ट लेने से
4: ज्यादा दांत साफ हो जाएंगे। हाँ,
3: और यही वजह है। तो आप कह रही हैं कि पेस्ट आप कम लीजिए।
4: स्टेप टू, उसके बाद ब्रश को दांतों पे 45 डिग्री के एंगल पे रखें, जिससे कि ज्यादा फायदा हो पाए। स्टेप थ्री, उसके बाद दांतों के एक हिस्से पे ब्रश न रगड़े। ये ज्यादातर गलती पाई जाती है कि लोग एक ही हिस्से पे अच्छे से रगड़ने लगते हैं कि ज्यादा साफ हो जाए, और जबकि बाकी हिस्सा उनका खराब हो जाता है।
3: अच्छा।
4: लेकिन धीरे धीरे सब हिस्सों पे रगड़े। हर स्थान पे करीब 12 से 15 सेकेंड तक ब्रश को रगड़ना चाहिए।
3: अच्छा।
4: स्टेप फोर, ब्रश को दांतों के सिर्फ आगे से ही नहीं साफ करें, बल्कि पीछे से भी साफ करें।
3: अच्छा।
4: जिससे कि पीछे का हिस्सा पीला ना पड़ जाए और उसमें गंदगी नहीं आ जाए। स्टेप फाइव, दांत साफ करने के बाद ज्यादातर ये गलती पाई जाती है कि जीभ साफ करना लोग भूल जाते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, दांतों के बाद जीभ की सफाई करें। इसे या तो टंग क्लीनर से या ब्रश के पीछे के हिस्से से साफ कर सकते हैं।
3: अच्छा।
4: और स्टेप सिक्स में है कि मुंह की सफाई करें। मुंह की साफ करने के लिए आप एक कप पानी मुंह में ले और उसे अच्छे से घुमाएं और उसे फिर कुल्ला कर दें। इसे 3-4 बार करने से मुंह की अच्छे से सफाई हो जाएगी और मुंह में बैक्टीरिया होने का कम चांसेस आएगा।
3: मतलब आपने स्टेप वन से लेकर स्टेप सिक्स तक बताया कि आप किस तरह से ब्रशिंग कर सकते हैं, कैसे आपको ब्रश को भी साफ करना है, दांत को भी साफ करना है, जीभ को भी साफ करना है
4: और मुंह की सफाई
3: और पूरे मुंह की भी सफाई करनी है। आगे बढ़ते हैं राखी जी, और आपसे जानना चाहेंगे हम ये कि पुराने जमाने में लोग दातून करते थे, आज के टाइम में हम ब्रश करते हैं, तो इन दोनों में कितना अंतर है, क्या प्रभाव है? दातून ज्यादा प्रभावकारी था, ब्रश उस मुकाबले नहीं है या क्या है?
4: दातून का इस्तेमाल भी देखिए अच्छा है, लेकिन इसके रेसे से जैसे फंस करके जैसे जो कैपिंग करते हैं उनके कैपिंग निकल जाने के चांसेस होते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि रेसे से फंस करके दांत में गैप भी आ सकता है।
3: अच्छा।
4: तो लेकिन जैसे नीम के दातून में कई औषधियां हैं, उनसे कई लाभ होते हैं, जैसे कि यह आपको दांतों को बैक्टीरिया से बचाता है, क्षारीय स्तर को बनाए रखता है, आपके मसूरों को मजबूत करता है, प्लाक बनाने से भी रोकता है और दांतों को सफेद करने में मददगार होता है, यहाँ तक कि मुंह के बदबू को भी कम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर दातून किया जाए तो काफी संभल के किया जाए और इसके अलावा ब्रश का भी प्रयोग कर लिया जाए।
3: अच्छा, कभी कभी लोग दातून जैसे जो ब्रश आज के समय में भी कुछ लोग जो ब्रश नहीं पसंद करते उनको दातून ही दातून से ज्यादा बेहतर सफाई होती है और दातून लेकर वो घंटों अपने
4: घंटों लगे रहते हैं,
3: रगड़ते रहते हैं, शायद ये सोच है कि वो दांत ज्यादा साफ होता है, और ब्रश करने वाले तो ये अंतर है कि यदि आप दातून कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितने देर तक और किस तरह से दातून या ब्रश का इस्तेमाल करना
4: जी
3: है।
4: बिल्कुल।
3: अब आते हैं दांतों की बीमारियों पर राखी जी। डॉक्टर राखी, अब हमें ये बताइए कि दांतों में होने वाली सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं?
4: देखिए, हमारा मुंह अनेक कीटाणुओं का घर है, ये सभी कीटाणु दांत, मसूरे, जीभ जैसे हिस्सों पे चिपके रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं मगर कुछ हमारे लिए मुसीबत खड़े करते हैं। हमें नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे ही कीटाणु दांतों में सड़न की वजह बनते हैं। दांत मूल रूप से तीन परतों से बना होता है, इनामेल, डेंटिन और परत। इनमें से इनामेल जो है ऊपरी परत होती है, बीच वाली परत डेंटिन होती है और नीचे की परत को पल्प कहते हैं।
3: अच्छा।
4: तो सबसे पहले सड़न का हमला इनामेल पे पड़ता है।
3: अच्छा।
4: और फिर धीरे धीरे वो पल्प तक पहुंच जाता है।
3: ये तीन परतों में हमारा दांत बना हुआ है, हमारा दांत तीन परत का होता है
4: जिसमें
3: सबसे पहले इनामेल पर अटैक होता है कीटाणुओं का और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पल्प तक पहुंच जाता है
4: जी।
3: अच्छा, कुछ दांत की कुछ विशेष बीमारियां भी हैं क्या?
4: हाँ, दांतों में पाए जाने वाली विशेष बीमारियों में जैसे पान, गुटके आदि के सेवन से दांत पीले पड़ जाते हैं, उनमें गंदगी आ जाती है। इससे स्केलिंग से साफ किया जाता है और ऐसे पदार्थों का सेवन हमें कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें।
3: स्केलिंग
4: दांत की सफाई हो गई, दांत का मशीन से सफाई होता है।
3: अच्छा।
4: पहले हैंड स्केलिंग भी किया जाता था लेकिन अब मशीन से किया जाता है, ज्यादा अच्छा होता है।
3: अच्छा।
4: फिर और बीमारियों में जैसे मीठे पदार्थ आदि खाने से या चॉकलेट या मिठाई आदि खाने से अच्छे से अगर सफाई नहीं किया जाए तो दांतों में कैविटी हो जाती है।
3: अच्छा, यदि आप चॉकलेट या कुछ मीठा ऐसा खा रहे हैं तो आपको ब्रश करके
4: ब्रश कर लेना चाहिए,
3: कुल्ला करना चाहिए ताकि आपके दांत साफ हो जाए और कीटाणु।
4: इसे अगर कैविटी हो भी जाती है तो इसे फिलिंग से ठीक कर दिया जाता है।
3: अच्छा।
4: अगर दांतों के पल्प वाले हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो दांतों में तेज दर्द हो जाती है।
3: अच्छा अच्छा।
4: जिसे RCT से ठीक किया जाता है। RCT में मेनली पेशेंट को 3-4 बार बुलाया जाता है और दांतों के अंदर से सफाई हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कैपिंग कर दिया जाता है।
3: RCT
4: भी होती है। हाँ हाँ।
3: अच्छा।
4: उसमें फाइलिंग होती है, मीन्स दांतों की अच्छे से अंदर से सफाई होती है, रूट की सफाई होती है इसमें। अगर दांत पूरी तरह खराब हो गया हो और दांतों को ठीक नहीं कर सकते हैं तो दांतों को निकाल देने में ही इसका इलाज हो सकता है, नहीं तो इन्फेक्शन दूसरे दांतों में पहुंच जाएगा और दूसरे दांतों को भी खराब कर सकता है।
3: अच्छा, यदि आपको दांत से संबंधित कोई भी परेशानी है जो आपके द्वारा बताए गए हैं और दांत यदि पूरी तरह खराब हो गए हैं तो आप जाके दांत निकलवा लें, नहीं तो फिर आपको दर्द सहना पड़ेगा।
4: हाँ।
3: दर्द से राहत चाहिए तो आप विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ से दिखाएं और अपने दांतों को निकलवा लें
4: जी।
3: या फिर जैसा वो सलाह देते हैं वैसा आप करें
4: जी।
3: हम बहुत सारे लोग हैं जो माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं, तो ये इस्तेमाल करने का भी कोई तरीका है क्या?
4: माउथवॉश जनरली एक तरल उत्पाद होता है जिसका उपयोग दांत, मसूरों और मुंह को साफ रखने के लिए किया जाता है।
3: अच्छा।
4: आमतौर पर हर्बल माउथवॉश का प्रयोग करना चाहिए, इसमें साइड इफेक्ट्स कम होते हैं।
3: अच्छा।
4: और इसमें दांतों के बैक्टीरिया को मारने के लिए हानिकारक एंटीसेप्टिक होते हैं और सांस की बदबू को कम किया जाता है इसका इस्तेमाल से।
3: अच्छा।
4: और दांतों के सड़न को भी रोका जाता है।
3: अच्छा।
4: माउथवॉश का तरीका, एक कैप माउथवॉश का उपयोग करें और उसे मुंह में ले और उसे अच्छे से घुमाए और उसे फिर कुल्ला कर दे। इसे निगलना नहीं चाहिए, इसे दिन में दो बार करना चाहिए, एक नाश्ते के बाद, एक रात में खाने के बाद और सोने के पहले करना चाहिए।
3: अच्छा, मतलब एक सुबह में आप करिए और एक रात में खाना वाना खा लिए।
4: जी बिल्कुल।
3: डॉक्टर राखी, आपने दांतों से संबंधित बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, अब अंत में क्या आप कोई संदेश देना चाहती हैं?
4: आजकल के बच्चों, बड़ों के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए मेरे लिए ये संदेश है कि आजकल वो लोग जो उसमें आकर कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन को या मांस के काफी कड़े हिस्सों को दांतों से चबाने का कोशिश करते हैं।
3: अच्छा।
4: ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए अपने आप को, क्योंकि इससे दांत कमजोर हो सकते हैं। कभी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को दांत से नहीं चबाने का कोशिश करें। अंत में मैं बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग सब दांतों को लेकर विशेष जागरूक रहिएगा और प्रतिदिन दांतों के साथ मुंह की भी अच्छे से सफाई करिए, जिससे कि कम से कम बैक्टीरिया और कम से कम बीमारी सामने आए और मेरे आज का प्रयास ये सफल हो सके।
3: डॉक्टर राखी, आप हमारे स्टूडियो में आई और दांतों से संबंधित बहुत सारी बातें आपने बताई, ब्रश कैसे करना चाहिए, माउथ वॉश का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, युवा पीढ़ी के लिए आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ठोस चीज़ों को दांतों से ना चबाएं या तोड़ने की कोशिश करें, इससे दांतों को क्षति पहुंच सकती है। अब हमारे स्टूडियो में आई और श्रमिक अपने दांतों की सामान्य सुरक्षा कैसे करें, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: अभी आप श्रोता श्रमिक अपने दांतों की सामान्य सुरक्षा कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर राखी से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। इनसे बातचीत कर रही थी स्नेहलता। और अब एक बार फिर हम बात करते हैं कौशल विकास योजना से किस तरह अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। श्रमिक मित्रों, आज का दौर केवल डिग्री का नहीं बल्कि हुनर का दौर है। जिसके पास कौशल है उसके पास रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। यही सोच लेकर भारत सरकार ने शुरू की है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न कौशल विकास योजनाएं, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हमारे देश में लाखों युवा ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी के कारण वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कौशल विकास योजनाएं इन्हीं सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। श्रमिक मित्रों, इन्हीं योजनाओं के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, होटल मैनेजमेंट, ड्राइविंग, डिजिटल मार्केटिंग, कृषि आधारित कार्य और अन्य कई तरह के रोजगार परक ट्रेड। विशेष बात यह है कि कई प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे नौकरी पाने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY ने देश भर में लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा है। आज कई युवा छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दोस्तों, कौशल विकास केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का रास्ता भी है। जब कोई युवा अपने हुनर से कमाई शुरू करता है तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। आज डिजिटल युग में नए नए रोजगार सामने आ रहे हैं। अगर युवा समय के साथ नई तकनीक सीख ले तो घर बैठे भी काम कर सकता है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंप्यूटर अकाउंटिंग जैसे क्षेत्र में युवाओं के लिए एक नए अवसर खुल गए हैं। श्रोता मित्रों, जरूरी है कि हम अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष क्षमता तो होती ही है। किसी को मशीनों का काम पसंद है तो किसी को कला का और किसी को तकनीक का। यदि सही प्रशिक्षण मिल जाए तो वह रुचि भविष्य का मजबूत कैरियर बन सकता है। याद रखें, हुनर कभी भी बेकार नहीं जाता है और कौशल ही सफलता की असली पहचान है। तो आइए हम सभी अपने आसपास के युवाओं को कौशल विकास योजनाओं की जानकारी दें, उन्हें प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। श्रोताओं, सपने तभी सच होते हैं जब मेहनत को कौशल का साथ मिलता है। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं किशोर कुमार के आवाज में ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने आपके लिए फिल्म तीन देवियां से ली है। मजरू के इस गीत को संगीतबद्ध किया है SD मर्मन ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल कारखाने।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: शाम के 6 बज रहे हैं, समाचार प्रसारित।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
5: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revant Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
5: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
6: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the centre's 5F vision, spanning farm, fibre, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resources deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimum loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives and scientific advancements in forecasting. Vice Admiral Sanjay Vatsyayan has been appointed as the next Flag Officer Commanding in Chief of the Western Naval Command headquartered in Mumbai. He will take charge of one of the Indian Navy's most strategically important commands responsible for safeguarding India's Western Maritime Front and key sea lanes in the Arabian Sea. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants have set a target of 204 runs for Chennai Super Kings at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. In reply, Chennai Super Kings were 60 for 1 in 4.4 over when reports last came in. Earlier put into bat, Lucknow posted 203 runs for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:10 हुए हैं।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हमारे केंद्र से अब सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
3: झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टुडू का प्यार भरा जोहार। श्रोता मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर बजराय व साथियों की आवाज में मुंडारी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली प्रस्तुति।

0: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आर बाज राय व साथियों की आवाज में मुंडारी लोकगीत। इसी के साथ ही हमारा ये झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। जोहार।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर से आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस समय शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत समाचार बुलेटिन सुनिएगा।

नाथ अद्य स्वमन्त्रिमण्डलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य षट् नेतारः मन्त्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडुराज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्रीपदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना

संस्कृत समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

श्रोता मित्रों, आज है विश्व ल्यूपस दिवस। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जानेंगे ल्यूपस के बारे में। फिर और एक चर्चा में हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। फिर और एक चर्चा जिसमें फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का मिशन, इस पर भी जानकारी जानेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से जिनका नाम है जगन्नाथ हांसदा, और इनसे बातें करेंगे उनके किसान के क्षेत्र में किस तरह से सफलता हासिल की। साथ ही हम लोकगीतों में सुनेंगे स्टीफन सोरेन व साथियों की आवाज़ में संथाली लोकगीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में इतना कुछ, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुने ये जरूरी संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम कृषि जगत में। तो आइए, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज है विश्व ल्यूपस दिवस, तो आइए जानें इसके बारे में। श्रोताओं, इस दिन का मुख्य उद्देश्य ल्यूपस नामक ऑटो इम्यून स्व प्रतिरक्षित बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों को पहचानना और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान की वकालत करना है। ये एक ऐसी दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित लाखों लोगों के लिए आशा की किरण और कार्रवाई का आह्वान है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस ल्यूपस के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वकालत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2026 का विषय है ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। इस बीमारी के छिपे हुए स्वरूप और इससे ग्रस्त लोगों पर पड़ने वाले शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित है। ल्यूपस एक जटिल स्व प्रतिरक्षित रोग है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली, जो सामान्यतः शरीर को संक्रमणों से बचाती है, गलती से स्वास्थ्य ऊतकों पर हमला कर देती है। इससे जोड़ों, त्वचा, गुर्दे, हृदय और फेफड़ों सहित विभिन्न अंगों में व्यापक सूजन और ऊतक क्षति हो सकती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस इस रोग का सबसे सामान्य और गंभीर रूप है। ल्यूपस के कई लक्षण आंतरिक होते हैं, जैसे कि अत्यधिक थकान, जोड़ों में दर्द और अंगों में सूजन। इसलिए मरीज अक्सर बाहर से स्वस्थ दिखते हैं, जबकि अंदर से वे काफी परेशान होते हैं। यही कारण है कि विश्व ल्यूपस दिवस 2026 का विषय इतना महत्वपूर्ण है। ल्यूपस को सबके सामने लाकर हम दुनिया को इसके बाहरी लक्षणों से परे देखने और इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दैनिक दृढ़ता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ल्यूपस जागरूकता दिवस केवल कैलेंडर पर एक तारीख से कहीं अधिक है। यह चिकित्सा अनुसंधान और रोगियों की वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इस पहल के प्राथमिक उद्देश्यों में ये शामिल है। श्रोता मित्रों, अब आइए आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दी जाती है। यह राशि 4 महीने के अंतराल पर 2,000 की 3 समान किस्तों में मिलती है। 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जा चुकी है और 23वीं किस्त जुलाई 2026 में आने की संभावना है। श्रोताओं, जानते हैं कि कौन इससे लाभ ले सकता है। सबसे पहले तो छोटे और सीमांत किसान परिवार, इसके बाद आते हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन हो, अगला है आधार कार्ड और बैंक खाता तो बिल्कुल ही जरूरी है, साथ ही KYC पूरा

इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर, इसे आवेदन कैसे करें? सबसे पहले तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो कि है पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल। इसके बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आधार नंबर और जानकारी भरें। मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी की गई, जिसमें 9.32 करोड़ से अधिक किसानों को 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है।

0: अब आइए अगली चर्चा में हम जानें कि फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का मिशन क्या है। जैसे कि फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, फसल उत्पादन बढ़ाना और खेती की लागत कम करना है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए कई मिशन और योजनाएं चलाती हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग है क्या? ये असल में फसल की जरूरत और मिट्टी की जांच के अनुसार सही मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैविक खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग करना ही संतुलित उर्वरक उपयोग कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की सेहत सुधारना, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, उर्वरकों की बर्बादी को रोकना, साथ ही खेती की लागत कम करना, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण। सरकार की प्रमुख योजनाओं में इस योजना के तहत किसानों की मिट्टी की जांच पर सोल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि खेत में कौन सा पोषण तत्व कितना कम या ज्यादा है। यह मिशन टिकाऊ खेती और संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देता है। जैविक खेती और कम रासायनिक उर्वरक उपयोग को भी प्रोत्साहित देती है। इसके साथ ही संतुलित उर्वरकों का उपयोग के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला तो है फसल की अच्छी बढ़वार, इसके अलावे अधिक उपज, मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, साथ ही पानी की बचत होती है और इसके साथ ही रोग और कीट कम लगते हैं। किसान भाइयों को ये सुझाव दिया जाता है कि हर 2 से 3 साल में मिट्टी जरूर जांच कराएं, केवल यूरिया पर निर्भर ना रहें। इसके साथ ही जैविक खाद और गोबर खाद का उपयोग जरूर करें, साथ ही फसल के अनुसार उर्वरक दें। इसके साथ साथ नीम कोटेड यूरिया का उपयोग जरूर करें। तो श्रोता मित्रों, इस चर्चा के बाद आइए आपकी आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक सफल किसान से, जिनका नाम है जगन्नाथ हांसदा। तो आइए इनसे मिलते हैं। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है जगन्नाथ हांसदा और ये भदवागोड़ा गांव के रहने वाले हैं। साथ ही इन्होंने अपने पशुपालन में सुकर पालन, साथ ही बतख और मछली पालन कर रहे हैं और इसके साथ ही वो खेतीबाड़ी में भी ध्यान दिए हुए हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। जगन्नाथ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
1: मेरा भी जोहार।
0: जगन्नाथ जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपने गांव में क्या क्या पशुओं का पालन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं?
1: मेरा यहाँ देखिए जैसे सुअर पालन है और बतख भी पालन है और मछली है, इन तीनों के पालन कर रहे हैं। जैसे सुअर पालन किए हैं, उसके नीचे हम जो तालाब किए हैं उसमें मछली भी है, उसमें मछली छोड़े हुए हैं। और जो सुअर का वेस्टेज उस्टेज जो जाता है गंदगी, वो तालाब में जाता है, उसी में से मछली का भी आहार हो जाता है।
0: तो जगन्नाथ जी, आपने कहा कि बतख वगैरह भी आप पाले हैं, तो बतखों को क्या खिलाते हैं?
1: बतख को हम खिलाते हैं जैसे आपका वो तालाब में वो तो रहते हैं, जैसे वहाँ पर तालाब में सुअर का जो वेस्टेज बचता है वो बह के चल जाता है, वही सब वो लोग खाते हैं। फिर अलग से फिर फीट खिलाना पड़ता है, जैसे आपका चावल उवल हुआ भूसी उसी मिला के बतख को खिलाते हैं।
0: और तालाब में तो गेंढ़ा वगैरह भी होते होंगे, मछली वगैरह?
1: हाँ, मछली गेंढ़ा वो सब भी है, तो वो सब से भी वो लोग उनका आहार हो जाता है, फिर भी देना पड़ता ही है।
0: तो आप ये बताइए कि आपने जो सुकर पालन किया है तो कौन कौन सी नस्ल आप पाले हैं और साथ ही उनको खान पान में आप क्या क्या देते हैं?
1: सुअर हम 3 तरह के पाले हैं, 3 तरह के नस्ल हैं, जैसे TND है और एक देसी है, और जिनको एक तो पट्टा हम लोग बोलते हैं पट्टा, हाँ, तो 3 तरह के हैं

0: और तीन तरह के सूअर को हम पाले हैं
1: जी। इनके खान पान में आप क्या क्या देते हैं इन्हें?
0: इनका खान पान में आपका जैसे हुआ होटल वेस्टेज, और जैसे धान भूसी घर का हुआ चावल बना के यही सब खिलाते हैं।
1: तो क्या बाकी जगहों पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो गर्भवती जो सुकर होते हैं उनको लोग फीड पे पालते हैं, तो क्या आप भी यही करते हैं?
0: हाँ जी, हाँ, जैसे गर्भवती हुआ सुअर तो उसको हम लोग कौन फीड और सादा भात और भूसी वही सब खिलाते हैं।
1: अच्छा, यानी कि जो गांव घर में जो चावल हो जाता है इसका भूसी बनता है, उसी भूसी को आप फीड में मिला के इनको खिलाते हैं। अगर इन पे कोई रोग वगैरह होता है तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आप क्या कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं?
0: तो है उसमें मेडिसिन है, जिसमें आपका जैसे कृमि हो गया तो कृमि में आपको अल्बोमोर टॉनिक होता है वो देते हैं, और उसके बाद उसको विटामिन टॉनिक देते हैं। और जैसे बच्चा में अगर कमज़ोर हो गया तो सबको आयरन विक्सिन देते हैं, विटामिन विक्सिन देते हैं, बस यही।
1: तो मछलियों की देखभाल के लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: मछलियों के देखभाल के लिए वही जो मैंने सुअर का जो वेस्टेज जाता है वो बह के नाली से तालाब में, तो बस वही, और उसको भी बीच बीच में फीड देना पड़ता ही है।
1: तो मछलियों में आप कौन कौन से मछली पाले हुए हैं?
0: मछली में उसमें है आपका रुई कतला, वही सब है।
1: अच्छा, तो ये रुई कतला जो है आप अभी तक उसमें से कितना लाभ उठा चुके हैं? कितना आपने रुई कतला का जो बीज छोड़ा था और आप उससे कितना लाभ उठा चुके हैं?
0: उसमें हम छोड़े थे 9 किलो, 9 किलो बीज छोड़े थे, उसमें से हम 1.5-2 क्विंटल पकड़ चुके हैं।
1: अच्छा, यानी कि उसमें मुनाफा बहुत अच्छा ही हुआ है। और उन्हें क्या आप एक्स्ट्रा कुछ खान पान भी देते हैं क्या?
0: ना, एक्स्ट्रा कुछ खान पान नहीं देते हैं, जो उसमें वेस्टेज जाता है फिर एक बार छोटे में जब छोटे रहते हैं बच्चा
1: जी,
0: उस टाइम फीड देना पड़ता है।
1: अच्छा, कौन सा फीड देते हैं?
0: यही जो सुअर वाला फीड होता है वही।
1: अच्छा अच्छा, आपने जैसे कहा कि आप सुकर पालन कर रहे हैं, साथ ही बतख, इसके अलावा मछली पालन भी, तो इन सारे पशु पालन के अलावा भी आप खेती बाड़ी में भी और भी कुछ करते हैं क्या?
0: जी हाँ, ये जैसे ये सब पालन करते हैं तो खेती बाड़ी भी, जैसे बाग बगीचे में जैसे हम लोग हैं तो गाँव घर में बाग होता है, बगीचा होता है, तो वो सब में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। जैसे साग सब्जी हुआ, आलू टमाटर बैंगन गोभी, ये सब भी करते हैं।
1: अच्छा, ये क्या व्यवसायिक तौर पे करते हैं या फिर अपने खान पान के लिए कर?
0: ना, अपना खान पान के लिए करते हैं और उसमें से थोड़ा व्यवसाय भी कर लेते हैं
1: जी। जगन्नाथ जी, आपके यहाँ कितने सुकर हैं?
0: मेरा यहाँ सुकर 100 से 150 तक हो जाएगा, बच्चा उच्चा मिला के।
1: इसमें मादा कितने हैं और जो बच्चे साथी जो जिनको आप अभी बेचेंगे वो कितने होंगे लगभग?
0: मादा इसमें होंगे आपका 15-20 हो जाएंगे, और जो उसमें बच्चा है किसी का 7 किसी का 8-10 ऐसे, और फिर आपका खस्सी है, खस्सी से वो आपका हो जाएगा 30-40 खस्सी भी।
1: अच्छा, तो आप क्या खस्सियों को बेचते हैं कि मादा या फिर बच्चों को? ज़्यादा सेल किनका है?
0: हम तो यहाँ रेडी करके ही बेचते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, बच्चा नहीं बेचते हैं, बच्चा भी किसी किसी को देते हैं, अगर जिसको ज़रूरत पड़ता है तो गांव देहात में मांगते हैं, तो गांव सर गांव जगह है ना, तो कोई मांगते हैं तो बच्चा भी देते हैं, लेकिन हम रेडी करके ही बेचते हैं।
1: रेडी करने से मतलब वो कितने क्विंटल के या कितने किलो के हो जाने पर उनको आप रेडी समझते हैं?
0: हम देखिए, हमको रखना है साल भर में आपका जितना बड़ा हो जाए बस उसका बाद ही बेचते हैं।
1: यानी उनका कितना किलो तक हो जाने से वो रेडी माना जाता है?
0: अब देखिए, 80 किलो 90 किलो 1 क्विंटल से पार वैसे।
1: अच्छा,
0: वही हिसाब से बेचते हैं
1: जी। तो आप इनके मार्केटिंग के लिए इनका मार्केटिंग कैसे करते हैं?
0: इनका जैसे मार्केटिंग रेडी होने के बाद, जैसे जो गांव इलाका है, ठीक है, गांव इलाका में जैसे 1-2 ऐसे भी हाट में बिक जाता है कटिंग करके, और प्लस आते हैं पैकारी बाहर से, उसको लट हिसाब से दे देते हैं।
1: कहाँ कहाँ से आते होंगे?
0: जैसे आपका धनबाद का पैकारी आते हैं, ठीक, बिहार का भी आते हैं
1: जी।
0: बस वही दो ही जगह का आए हैं लेने के लिए।
1: जगन्नाथ जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, तो अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आकर पशुपालन और साथ ही ये साग सब्जियाँ फसलों को उगाकर अपना आय वृद्धि करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरे किसान भाई को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खाली फसल ना उगाएं, और भी जैसे कृषि का है, कृषि जैसे पशुपालन भी करें, हाँ बतख पालन करें, इसमें क्या है कि आमदनी अधिक है। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करें और विशेष रूप से करें, अपना आय बढ़ाएं।
1: बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ जी आपसे जानकर कि आप पशुपालन के साथ ही खेती बाड़ी में भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ जगन्नाथ हंसदा जी भदवागोड़ा गांव से, और इनसे हमने जाना कि किस तरह से ये अपने गांव में रहकर खेतीबाड़ी साथ ही पशुपालन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी, आपने हमारे कार्यक्रम में इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी, जोहार।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जगन्नाथ हंसदा जी को, जो कि एक सफल किसान है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई और इसने भारत में प्रचलित सभी उपज बीमा योजनाओं का स्थान ले लिया है। इस योजना को फसल क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए शुरू किया गया। इस योजना में स्थानीय जोखिम, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान आदि के अंतर्गत कवरेज का विस्तार किया गया है और इसका उद्देश्य उपज आकलन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना है, किसानों में जागरूकता बढ़ाकर और प्रीमियम की दरें कम रखकर। इस योजना का लक्ष्य भारत में फसल बीमा की पहुंच को बढ़ाना है। इसके अनिवार्य घटक में है वित्तीय संस्थानों से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि संचालन, ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्य रूप से इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है स्वैच्छिक घटक, या योजना उन किसानों के लिए वैकल्पिक होगी जिन्होंने ऋण नहीं लिया है। इस योजना के अंतर्गत फसल के प्रमुख चरण और फसल के नुकसान का कारण बनने वाले जोखिम शामिल हैं, जैसे कि बुआई रोपण में बाधा का जोखिम, इसके अंतर्गत कम वर्षा या प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बीमित क्षेत्र में बुआई रोपण नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है खड़ी फसल, जो कि बुआई से कटाई तक की होती है। इसके अंतर्गत व्यापक जोखिम बीमा उन जोखिमों के कारण होने वाले उपज के नुकसान को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जैसे कि सूखा, शुष्क मौसम, बाढ़, जल भराव, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, हरिकेन और बावंडर। अगला आता है फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, जैसे कि चक्रवात और चक्रवाती बारिश तथा बेमौसम बारिश जैसे विशिष्ट खतरों से बचाव के लिए कटाई के बाद खेत में काटकर और फैलाकर सुखाने के लिए छोड़ी गई फसलों के लिए कटाई के बाद अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि तक ही कवरेज उपलब्ध है। आइए जाने की योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला तो है पात्रता में किसान के पास खेती योग्य जमीन हो, बटाईदार और किराएदार किसान भी कई राज्यों में पात्र होते हैं, आधार कार्ड और बैंक खाता इसमें जरूरी होता है। अगला आता है जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, बोई गई फसल की जानकारी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नुकसान होने पर क्लेम करें। यदि फसल खराब हो जाए तो 72 घंटे के अंदर सूचना दें। बीमा कंपनी, कृषि अधिकारी या हेल्पलाइन पर जानकारी दें। ऑनलाइन रिपोर्ट कॉर्प लॉस विकल्प से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो श्रोता मित्रों, अब आइए आपको मनोरंजन की दुनिया में लेकर चलते हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं संताली लोकगीत और कलाकार हैं स्टीफन सोरेन व साथी। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज में ये संताली लोकगीत। सुनाने जा रहे हैं कलाकार हैं स्टीफन सोरेन व साथी। प्रस्तुत गीत एक संताली दोंग गीत है, जिसे विवाह के शुभ अवसर पर गाया जाता है। इसमें दो प्रेमी प्रेमिका के बीच की वार्ता है, जिसमें प्रेमी और

अपने प्रेम संबंध को और भी गहरा करते हुए पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और पहली मुलाकात कैसी हुई थी, साथ ही उनका प्यार किस तरह से फलता फूलता गया, इन बातों को याद कर दोनों रासलीला कर रहे हैं। तो आइए सुने स्टीफन सोरेन व साथियों की आवाज में ये दोंग सेरिंग।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे स्टीफन सोरेन व साथियों की आवाज में संताली लोकगीत। तो आइए जानते हैं मौसम से संबंधित सूचना। कृषि परामर्श सेवाओं कृषि भौत की संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है, जिसमें अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार गृह की सफाई करें और अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार गृह को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो उन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जावे। तो श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त सुरेंद्र टूडू को आज्ञा दीजिए। अंत में सभी को मेरा प्यार भरा जोहार।

कृषक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में हमारे रांची केंद्र से होगा, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ?
2: एडमिशन कराने।
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
8: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
7: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में कल से राज्य स्तरीय दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बास्किकिता पथ और बेनिदास भुस्का तक बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़, संगठित वसूली नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संचालन तंत्र और संभावित विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में धनबाद में एक कुख्यात अपराधी द्वारा विदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग दिनों में जारी वीडियो ने पूरे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने इस मामले को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव के साथ पद से हटाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह जिले के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के तोलडी के रहने वाले आमिर हसन को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
3: एक महीने से मेरा पेट में दर्द था, वो पेंडिस हुआ था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा सरकार ने ये जो दिया तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसीलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
1: राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। हजारीबाग जिले में आज हुई दो दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गोरहर थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें सब्जी लदे एक अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरहर गांव के समीप हुई, जिसमें 4 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@newsandalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@newsrachi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल @newsrachi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया।
4: शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हिमंत बिस्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
1: श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा कारतूस

0: मोबाइल और दो पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खूंटी पुलिस ने जिले के रनिया थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर लगभग 8 लाख रुपए मूल्य का डोरा जब्त किया है। तोरपा SDPO क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है।
1: ये रानिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी, तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है, उसे ले जा रहा था। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं, नहीं करीब 50 तो हो गए।
0: रांची स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डी ने बताया कि इस डांस फेस्टिवल में देश के 18 प्रदेशों के 300 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये नृत्य कार्यशाला कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश है।
2: मैं IADF का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाकारों को मंच प्रदान कर सकूं। कलाकारों के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द इंडिया यहाँ कलाकार है, अनफॉर्चुनेटली बाहर से भी कलाकार थे। यहाँ चेन्नई, बेंगलुरु, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, झारखंड, सभी जगह से हमारे यहाँ कलाकार है।
0: झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्वी सिंहभूम में आयोजित इस चैंपियनशिप में रांची की टीम ने मेजबान टीम को 4-5 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला की रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भगत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किला शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच NIA से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में कल से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो।
5: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
9: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
9: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
10: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
9: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
10: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
9: आप कौन?
6: RBI कहता है
11: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: प्रस्तुत है जिले में

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिए जाने का असर धरातल पर दिखने लगा है। गिरिडीह के गरीब प्रधानमंत्री आवास पाकर बेहद खुश हैं और भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 3 अंदूडी जरडी का निवासी हूँ। मैं पहले मिट्टी का मकान था, लेकिन जब मोदी जी का आवास मुझे मिला तो मैं इस आवास को बना पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकान में बहुत अच्छा से मैं रहता हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।
1: डीसी राम निवास यादव ने जिला वासियों से स्व जनगणना में भाग लेने की अपील की है।
3: आम नागरिकों के लिए स्व गणना की सुविधा एक विशेष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1 मई से 15 मई 2026 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु एक पोर्टल se.census.gov.in बनाया गया है, जो 1 मई से चालू होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे सेल्फ इनोग्रेशन के प्रति जागरूक रहें, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें तथा इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
1: गिरिडीह शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम जन जागरण अभियान चलाएगा। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया है।
4: अवेयरनेस के लिए जो जो कदम उठाना है हम लोग को, जैसे हमारा कांक्षा कंपनी है, हमारा निगम के कर्मी है, सभी को निर्देश देने का है कि हम लोग उसको निर्देश दें ताकि, और पॉलीथीन का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ गिरिडीह में पॉलीथीन का, उसको लेके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दुकानदार हैं उस पर हम लोग पहले अपील करेंगे कि वो ना इसका उपयोग ना करें, और उसके बाद भी यदि कोई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार किसानों के उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। नाबार्ड ने जमुआ प्रखंड में हाट शेड का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोग और किसान काफी खुश हैं।
5: हमारा नाम छत्तरधारी मातृ सेवा निधि शिक्षक, जो बरसात में हम लोग सब भींग जाते थे, साग सब्जी हम लोग का भींग का बर्बाद हो जाता था, किसी तरह से दौड़ के मंदिर जाते थे, वहाँ भी मंदिर घुसने में थोड़ा दिक्कत होता था, सूट प्याज लेके जाना मुश्किल होता था। अभी सरकार के द्वारा जो बन गया, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को रहने का बैठने का सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है।
1: पिछले 15 दिनों से मौसम के रुख में आए बदलाव से मई महीने में ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है। प्रत्येक दिन हो रहे बारिश से तापमान लुढ़क गया है और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल गई है। इधर बारिश और आंधी से गिरिडीह में जान माल का भी नुकसान हुआ है। इस बार आम फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: ये आकाशवाणी कराची।
1: आकाशवाणी कराची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन और जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:16 हुए हैं। हमारे केंद्र से आप सुनिए बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला प्रेमी श्रोताओं के लिए बांग्ला कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 92.4 MHz पर। शाम के 7:45 हो रहे हैं। अगले कार्यक्रम सुनने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।
6: कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी परिवर्तन, मिट्टी में गर्मी, ओजोन परत की कमी आदि में वृद्धि हुई है। हमारी विकास प्रक्रिया ने हजारों लोगों को पानी, जंगलों और भूमि से विस्थापित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण स्थिति में जंगल की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य होना चाहिए बल्कि हमारा धर्म भी होना चाहिए। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का सामान्य रहने वाला वातावरण प्रदूषित हो गया है। ये ओजोन परत के लिए गंभीर खतरा है जो पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक है। उस बुरे दिन की कल्पना भी करना बेहद खतरनाक होगा जब ओजोन परत गायब हो जाएगी। जंगल के क्षेत्र में निरंतर कमी और भूमि के क्षरण के कारण रेगिस्तान एक बड़े पैमाने पर फैल रहा है। साथ ही दोस्तों वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जंगलों के घटते क्षेत्र के साथ बारिश भी अनियमित हो रही है। इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है, जिससे मनुष्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम सब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने की प्रतिज्ञा लें और जंगल को बचाने में एक अमूल्य योगदान करें। यदि वास्तव में हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल की विरासत की रक्षा करनी है तो हमें उनसे लाभ प्राप्त करने की सोच की बजाय जीवन के लिए जंगलों को बचाने की सोच का विकास करना होगा। हमें सीखना होगा कि जंगल का सम्मान कैसे करें और हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलें। दोस्तों बातें जब जंगलों की कटाई की हो ही रही है तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं वीना पांडे से इस वार्ता में। विषय है भूस्खलन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान।
7: आदिकाल से ही मानव सभ्यता जंगलों, वनों, पेड़ पौधों पर आश्रित रही है और आज भी जंगल एवं पेड़ पौधों की आवश्यकता है। भोजन, लकड़ी, आश्रय, औषधीय दवाइयाँ, छाया, शीतलता, ताप संतुलन, सौंदर्यता वनों व पेड़ पौधों के घनेपन से है। आज विकास की रफ्तार को देखते हुए मानव आवश्यकताएं बढ़ी हैं, लिहाजा खेती, आश्रय, खनन, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, लकड़ियों की आवश्यकता व ईंधन की मांग के चलते जंगलों को निरंतर सफाया किया जा रहा है। हर साल लगभग 2,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की दर से जंगलों की कटाई की जा रही है। निरंतर पेड़ों की कटाई होते रहने से मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा, जैव विविधता, CO2 की अधिकता, श्वसन रोग आदि की समस्याएं आती हैं। स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ रहना अनिवार्य है। इसके लिए हमारे आसपास पेड़ पौधों की अधिकता बेहद जरूरी है। वृक्षों के अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने की संभावना तीव्र हो जाती है। वनों की कटाई निजी स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों को काटने, जंगलों को जलाने एवं बड़े स्तर पर जंगलों को हटाना है। पूरी मानव जाति के साथ साथ पर्यावरण में प्राकृतिक संतुलन के प्रबंधन के लिए वनों का बहुत महत्व है। हालांकि मानव समाज और पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव को देखे बिना पेड़ों को नियमित रूप से काटे जा रहा है। आज दुनिया भर में हो रही वनों की कटाई का मुख्य कारण निवास हेतु भूमि क्षेत्र को बढ़ाना है। दिन प्रतिदिन तेजी के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास हेतु भूमि की कमी आसानी से देखी जा सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक इकाई हेतु भी वनों की कटाई की जा रही है। कृषि क्रियाएं, शहरीकरण, देश की बुनियादी ढांचों का निर्माण हेतु भी वनों की कटाई की जाती रही है। वनों की कटाई के कई हानिकारक प्रभाव हैं। वनों की कटाई पर्यावरण और मानव प्रजाति दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे पहला, मृदा अपरदन। पेड़ों की कटाई का सबसे हानिकारक प्रभाव मृदा अपरदन है। पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं। पेड़ों के कटने से मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा और पानी मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती हैं। मानव द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का दूसरा बड़ा दुष्परिणाम भूस्खलन है। भूस्खलन जैसी आपदाएं पेड़ों को कटने से होती हैं। चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर से नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन एक चट्टान के अकेले टुकड़े से लेकर मलबे के बहुत बड़े तूफान तक के रूप में हो सकता है, जिसमें भारी मात्रा में चट्टाने और मिट्टी कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों को निरंतर काटना एवं सड़कों का गहरा कटाव भी भूस्खलन उत्पन्न करते हैं। मिट्टी के कटाव बाढ़ जैसी भीषण समस्याओं से हमें हर साल झेलना पड़ता है। वनों की निरंतर कटाई होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। तापमान अपने चरम बिंदु पर पहुंच रहा है, जिसके कारण हिमालय पर्वतमाला के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में ग्लेशियर फटने के कारण आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी, जिसमें भीषण जान माल की क्षति भी हुई थी। हर्बल दवाओं की अनुपलब्धता। पुराने समय में जब पेड़ पौधों की अधिकता थी, जिसमें कई औषधीय गुणों वाले पेड़ पौधे भी थे, यदि कोई बीमार पड़ता तो वैद्य उन्हें औषधीय पेड़ पौधों के पत्तों एवं छालों से दवाओं का निर्माण कर मरीजों को देते थे, जिससे चमत्कारिक रूप से मरीज ठीक हो जाते थे। परंतु वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहाड़ एवं जंगल वीरान हो गए हैं, जिस कारण औषधीय वनस्पतियां प्राप्त करना दुर्लभ हो गया है। साथ ही साथ मानव की रसायन युक्त दवाओं पर निर्भरता बढ़ गई है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पेड़ पौधे पर्यावरण में मिट्टी के पानी को छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों के कटने से वातावरण में पानी की दर कम हो रही है, जिसके कारण बादल नहीं बन पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कृषि के मैदानों में उचित वर्षा नहीं हो रही है, जिससे सूखा की समस्या उत्पन्न हो गए हैं। साथ ही पेयजल का अनुपात भी घट रहा है। पेड़ों की कटाई वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वनों की कटाई वन्य जीवों को भी प्रभावित कर रही है। जानवरों ने अपना निवास खो दिया है, जिसके कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। साथ ही वनों के काटे जाने पर जंगली जानवर भी भोजन की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन लंबे समय तक तभी चल सकता है अगर हम वनों का संरक्षण करेंगे। अगर हम वनों की अंधाधुंध कटाई यूं ही करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव जीवन दुश्वार हो जाएगा। मानव जीवन के साथ साथ पेड़ पौधों की बेलगाम कटाई पृथ्वी पर विभिन्न जानवरों और पक्षियों के अस्तित्व को भी संकट में डाल रही है। वनों की अवैध कटाई ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वर्षों से हो रही लगातार अवैध कटाई ने जहां मानवीय जीवन को प्रभावित किया है, वही असंतुलित मौसम चक्र को भी उत्पन्न किया है। वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण देश में वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत चिंताजनक है। विकास कार्यों, आवासीय जरूरतों, उद्योगों तथा खनिज दोहन के लिए भी पेड़ों की कटाई वर्षों से होती आ रही है। सरकारी कानून और नियमों के बावजूद वनों की कटाई धुआंधार जारी है। इसके लिए अवैज्ञानिक व बेतरतीब विकास, जनसंख्या विस्फोट व भोगवादी संस्कृति भी जवाबदेह है। देश में लगभग हर राज्य में विकास एवं गतिविधियों के नाम और आड़ में वनों की कटाई धड़ल्ले से की जाती है। वनों का विनाश मौजूदा दौर में राजस्थान की सबसे गंभीर और संवेदनशील समस्या है। प्रदेश में निरंतर हो रहे अकाल के पीछे भी अहम वजह वनों की कटाई ही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 1990 से 2005 के हर मिनट 9 हेक्टेयर जंगलों का सफाया किया गया है। दूसरे शब्दों में हर साल औसतन 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वनों की कटाई की गई है। पूरी धरती पर अब लगभग 30% वन क्षेत्र ही बचे हैं, जो अपने आप में खतरे की घंटी है। वनों की तबाही और इसके चलते वन्य जीवों के विलुप्त होने के आंकड़े बहुत ही भयावह हैं। वनों की कटाई रोकने हेतु सरकार के द्वारा भी कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वन विनाशक वुड ट्रेडर्स के लिए कठोर दंड का प्रावधान किए गए हैं। वन्य क्षेत्र वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण मुहैया कराई जा रही है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास योजना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अन्य विश्व स्तरीय संस्थाएं भी भारत के वन्य क्षेत्र विकास हेतु आर्थिक मदद देती रहती हैं। परंतु पर्यावरण असंतुलन को रोकने हेतु प्रभावकारी कानून बनाने एवं क्रियान्वयन की जरूरत है, जो वन कटाई से वन क्षेत्र के असंतुलन को रोकने में प्रभावकारी हो। आम जनता को पर्यावरण बचाने के लिए पूर्व में संचालित आंदोलनों एवं अभियानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में 1973 में चिपको आंदोलन में वनों को वन व्यवसायियों एवं माफियाओं से बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर वृक्षों को कटने से बचाया। पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व लंबे समय तक तभी रह सकता है जब हम वनों का संरक्षण करेंगे। अगर हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ही जारी रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पेड़ों की कटाई पृथ्वी पर विभिन्न जानवरों, पक्षियों के अस्तित्व को भी संकट में डाल रही है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ों का रोपण करनी चाहिए। इसके लिए समय समय पर विशेषकर बरसात में वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी अपने जन्मदिन में कम से कम एक फलदार वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित करनी चाहिए। वनों को हमें किसी भी कीमत में बचाना हम सभी मानवता के लिए आवश्यक है। हमें पूरी ईमानदारी के साथ वनों के बचाव हेतु प्रयास करने चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार और सभी संबंधित संस्थाओं को भी वनों की कटाई पर सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है जंगल के बचाव के लिए जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को उन जंगलों के प्रति ममता जागृत कराने की, ताकि वे उन पेड़ों को अपना हिस्सा समझे और उन्हें बचाने के लिए कृत संकल्प हों। क्योंकि दंड ही काफी नहीं है, जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तब तक केवल सरकारी प्रयास से यह संभव नहीं है। हमारे झारखंड में कुछ क्षेत्रों में रहने वाली माताएं एवं बहनें पेड़ को राखी बांधती हैं एवं उनके रक्षा का वचन लेती हैं। इस प्रकार के अभियान से ही हम जंगलों को हरा भरा पा सकते हैं।
6: भूस्खलन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान, इस विषय पर जानकारी दे रही थी वीना पांडे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। इस साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा था आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर।
8: हेलो डॉक्टर,
9: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
8: हेलो डॉक्टर,
9: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से। 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज का यह कार्यक्रम ईश्वर के रूप में इस धरती पर उपस्थित जीवनदायिनी को समर्पित। तुम्हारी आंखों में नई आंखों के छोटे छोटे दृश्य हैं, तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा दबाव है, तुम्हारे होठों पर नई बोली की पहली चुप्पी है और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं।

तुम ऋतुओं को पसंद करती हो और आकाश में किसी न किसी की प्रतीक्षा करती हो। तुम्हारी बाहें ऋतुओं की तरह युवा हैं। तुम्हारे कितने जीवित जल तुम्हें घेरते ही जा रहे हैं, और तुम हो कि फिर खड़ी हो अलसाई धूप तपा मुख लिए, एक नए झरने का कलरव सुनती, एक घाटी की पूरी हरी महिमा के साथ।

बचपन में घंटों माँ को निहारा करता था। मुझे वह बेहद सुंदर लगती थी। उसके हाथ कोमल गुलाबी फूलों की तरह थे, पांव खरगोश के पांव जैसे। उसकी आंखें सदा सपनों से सराबोर दिखती। उसके लंबे काले बाल हर पल उलझाए रखते मुझे। जब माँ नहा धोकर तैयार होती, साड़ी बांधती, मेरे लिए वो विश्व का सुंदरतम दृश्य होता, जिसके रंगों और खुशबुओं में मैं यूं खो जाता, जैसे कोई एलिस आश्चर्य लोक में।

माँ, तुम केवल एक शब्द नहीं, एक पूरा संसार हो। ईश्वर के हाथों से रचा गया ममता का सार हो। जब मैं शून्य था, तुमने मुझे आकार दिया, अपने रक्त से सींच कर मुझे ये संसार दिया। तुम्हारी उंगलियों को थाम कर मैंने चलना सीखा, ठोकरें लगी तो फिर कर

मेरी उंगली थाम कर चलना सिखाया है जिसने, मेरी हर छोटी जीत पर मुस्कुराया है जो, सारे जहां की खुशियां कम है उसके आगे, ईश्वर का दूसरा रूप बनकर।

थक कर जब सो जाता हूँ मैं, अपनी गोद में सुलाती है माँ, हर दुख दर्द को मेरे हंस कर भुला देती है माँ। खुदा से क्या मांगू मैं अपनी तकदीर में, मेरी किस्मत के हर पन्ने पर प्यार लिख देती है माँ।

0: करेगा मामा?
1: क्या?
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस।
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, अरे बैटरी लाना ही भूल गया
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया।

तूने ही मुझे सहारा दिया, डूबती हुई मेरी कश्ती को तूने ही किनारा दिया। तेरी दुआओं में वो असर है जो पत्थर पिघला दे, तू चाहे तो मेरी हर बिगड़ी हुई बात बना दे। दुनिया की भीड़ में तू ही मेरा सच्चा साया है, मैंने अपनी माँ में ही साक्षात रब को पाया है।

संगीत के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए वे थी तलाश, खलनायक, राजा और रंक, लाडला, यादियां, दसवीं दानियां, फटा पोस्टर, निकला हीरो। इन गीतों का स्वर दिया था मन्ना डे, जगजीत सिंह, कविता कृष्णमूर्ति, लता मंगेशकर, के, कैलाश खेर, परेश, नरेश, आतिफ असलम और साथियों ने। बच्चे ने सुना माँ त्याग का दूसरा नाम है, बच्चे ने जाना माँ चूल्हे की आग का दूसरा नाम है, माँ का पहला नाम ढूंढ रहा है बच्चा। मदर्स डे यानी मातृ दिवस पर फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समर्पित था माताओं के असीम तपस्या और त्याग को। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभाष की।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुनिएगा। पहले देश और दुनिया की खबरें होंगी, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों में, समाचार संध्या और न्यूज एट 9 रात 9 बजे। करंट इवेंट्स का प्रोग्राम स्पॉटलाइट होगा 9:15 पर, 9:30 पर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर सुनिएगा और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात 10 बजे। इस समय रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा समाचार संध्या।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभासपाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभासपाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभासपाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
5: Energy security ka kya mahatva hai, ye aaj duniya ka har vyakti mehsoos kar raha hai. Isliye Bharat ki energy security par hamari kendra sarkar abhutpurva nivesh kar rahi. Malkapur mein Indian oil ke naye terminal ka udghatan isi disha mein ek bada kadam hai. Bitte saalon mein solar power ke mamle mein भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है. सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहा है. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
4: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
5: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है. साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है. जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है. ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है.
4: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion, and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
5: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है. यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है. आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है.
4: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.

0: uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: Hamare yahan kaha gaya hai ashtadash puraneshu vyasasya vachanam dvayam परोपकाराह पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
0: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative health care with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboobnagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji economic corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka,

0: Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
1: Zahirabad industrial corridor विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export-oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: Our Kendra Sarkar abhutpurv nivesh kar rahi. Malkapur mein Indian Oil ke naye terminal ka udghatan isi disha mein ek bada kadam hai. Yeh terminal Telangana ki badhti एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
0: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ईच पीएम मित्रा पार्क कुड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ नियरली 10,000 crore रुपीज व्हाइल जनरेटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration, and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight.

0: संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top-grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.

0: इस रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल। ¶¶

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पी होली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahir Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।